वाह के साथ आपका दिन कितना बेहतरीन होने वाला है। फिलहाल बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाते जाना है, लेकिन उसकी शुरुआत इस अगले ट्रैक के साथ होनी चाहिए, है ना। तो एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए छापन सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर। बहुत जबरदस्त किस्से आपके साथ बांटे जाएंगे इस ट्रैक के उस पार। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके पहले कि आपके साथ आज की बातें करूं, सबसे पहले उन्हें विश कर दूं जिनका आज बर्थडे है। सो बर्थडे बेबीज, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और बस दुआ इतनी है कि यार जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कदम से कदम मिलाते रहिए और चलते रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अभी जीतना है, हासिल करना है। जिनके लिए आज दिन इसलिए खास है क्योंकि आज वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी। सो यार एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, आपके रिश्ते को डिसबैलेंस करेंगे और आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि ये कहना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के साथ अगर विश्वास का रिश्ता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। और जिनके लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

जी इट हैपेंस सुन रहे आप सताक्षी के साथ आपकी अपनी रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इस बार इट हैपेंस का साथ जो इस वक्त आपके साथ है बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये सुबह आपके लिए बहुत स्पेशल है। वैसे चलिए बात करते हैं अपने गोल्स की। यू नो हम सबके पास ना एक विश लिस्ट होती है और एक होता है गोल, मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये पाना है, ये होती है आपकी विश लिस्ट। लेकिन पता आपको विश लिस्ट और गोल में फर्क क्या होता है? देखिए विश लिस्ट सिर्फ आपके दिमाग में होती है, आप उसे कभी भी ना एक पॉसिबल वे के जरिए आप उसे अपनी ड्रीम से सच्चाई नहीं बना पाते, और गोल जो है वो कैलेंडर में होता है। सो अगर आप अपने सपने के आगे कोई डेट नहीं लिखते हैं ना, तो वो सपना सपना ही रह जाता है, आपकी विश लिस्ट ही रह जाता है। तो इसलिए अपने सपने को अगर आप सच्चाई में सामने लाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा सा स्टेप लीजिए, चाहे सबसे छोटा ही क्यों ना हो वो स्टेप, बट उठाइए जरूर ताकि आप अपने गोल की ओर बढ़ सकें। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

लोग क्या कहेंगे, आय हाय, बड़ा ही फेमस डायलॉग है। अगर फेल हो गए तो हमारा दिमाग यू नो हमेशा हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन आज सताक्षी आपसे एक सवाल पूछती है, अगर आप कामयाब हो गए तो। इस अगर को कभी दूसरे एंगल से देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी आदत है ना नेगेटिव साइड को ही देखने की। यू नो लोग हमेशा आपके रिजल्ट पर ताली बजाते हैं, आपकी मेहनत पर नहीं। तो लोगों की बातें सुनना बंद करिए और अपने काम की आवाज को थोड़ा और तेज करिए। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए ठापंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं। हमारे 3 बैक टू बैक ट्रैक्स का ये सफर है जिसे आप हर रोज सुनते हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर। आइए इस सेगमेंट में अभी ये अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

कानों की हैट्रिक में हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये लास्ट ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो कानों की हैट्रिक के बाद आपसे होने वाली हैं, सो तैयार रहिए उसके लिए। और इस अगले ट्रैक के साथ आइए बढ़ते हैं सफर में आगे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

रेडियो ब्रिस्बेन पर सदाक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। भाई रेंटल बॉयफ्रेंड, इस टर्म को सुना है आपने? हाँ, देखिए ये टर्म जो है इसकी शुरुआत हुई थी जापान से और अब ये इंडिया में भी अपने पैर पसार रहा है। रेंटल बॉयफ्रेंड क्या मतलब है इसका? भाई जैसा कि वर्ड बता रहा है, रेंटल बॉयफ्रेंड मतलब किराए पर बॉयफ्रेंड का मिलना। अच्छा, ऐसा होता था ना कि पूरे ग्रुप में सबके पास अपने बॉयफ्रेंड्स हैं लेकिन एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है और वो डायलॉग मारता था ना कि बॉयफ्रेंड क्या किराए पे मिलता है जो उठा लूं। तो हाँ भाई, अब बॉयफ्रेंड किराए पे मिलता है और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए ये रेंटल बॉयफ्रेंड आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्दी ट्रेंड चल पड़ा है और इस ट्रेंड के चलते लोग मूवीज जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, रेंटल बॉयफ्रेंड हायर कर सकते हैं और स्टेटस सिंबल की तरह है ये। लेकिन ये ट्रेंड जब मैं पढ़ रही थी, जापान तो एक खैर अदर लेवल कंट्री है, लेकिन इंडिया के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि यार कहाँ आ गया है सब, किस ओर आज का यूथ जा रहा है, लोग जा रहे हैं। मतलब हम बेसिकली देखा जाए तो ये स्टेटस सिंबल है ना कि भाई सबके पास है, हमारे पास नहीं है तो हमें भी दिखाना है कि हमारे पास तो है, बट क्या ही यूज है इसका? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। आई डोंट नो कि क्यों ये स्टेटस सिंबल इतना हाई होता जा रहा है हमारा कि हमें रेंटल बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। आपका इस बारे में क्या थॉट है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM सताक्षी के साथ हैं आप।

यार, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में भी देखा, और अब हम देख रहे हैं भारत में। हजारों बच्चे सड़कों पर हैं और किस तरह से उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, इस मोमेंट को, प्रोटेस्ट मोमेंट को दबाया जा रहा है, वो देखा जाए तो दोनों साइड मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना साइड भी है क्योंकि इसके पहले भी पेपर्स लीक होते रहे, लेकिन बहुत सारे सिलेबस चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशन मैनेजमेंट में सुधार भी हुआ है इस दौरान, भारत की बात करूं तो। उसके बाद एकदम से इस तरह का आंदोलन आना, डेफिनेटली स्टूडेंट्स की आड़ में बाकी की पार्टीज अपना मुनाफा तो कमा रही हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमेशा जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। तो जनता का सेवक होने का मतलब ये था इस वक्त, इस इतना आंदोलन बढ़ता ही नहीं आई गेस, अगर नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट्स के बीच पहुंच जाते। इस मोमेंट में कई नेता शामिल हो चुके हैं, कई अभिनेता अभिनेत्रियां शामिल हो चुके हैं, मतलब बॉलीवुड भी इस मोमेंट में खड़ा है, कई बड़े लोग शामिल हो चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग अगर इस मोमेंट का हिस्सा ना बनते, जाकर बात करते स्टूडेंट्स से, तो पार्टीज को, जो अदर पार्टीज हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता और शायद ये हालत नहीं होती। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल उल्टा काम किया है, उन्होंने बच्चों को पर डंडे चलवाए, उन्होंने बच्चों को मरवाया और उन्हें सप्रेस करने की, उन्हें दबाने की कोशिश की, जो आई थिंक, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आई गेस ये गलत है। आपकी राय क्या है, हमारे साथ बांटिएगा। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रहे हैं, एंजॉय कीजिए और सताक्षी को सुनते रहिए इट हैपेंस में।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वंसन ओवर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो बॉलीवुड विच ना अक्सर कहा जाता है कि फिल्मा दो तरह नाल इतिहास बनाउंदियां ने। एक रिलीज तो पहला हफ्ते विच करोड़ रुपए कमांदियां ने ते रिकॉर्ड बुक विच दर्ज हो जांदियां ने ते दूसरा वो जो थिएटर विच भावे ही वधिया परफॉर्मेंस ना करन पर दर्शकां दे ज़हन विच सालां तक जिंदा रहिंदियां ने। ते ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर ने जिन्हां ने पांच दहाकियां तक फिल्म इंडस्ट्री ते राज कीता। ब्लॉकबस्टर बॉबी तो दे लीड रोल दे तौर विच शुरुआत करन वाले ऋषि कपूर ने अपने पूरे करियर विच सिर्फ कमर्शियल फॉर्मूला फिल्मा दे पिछे नहीं भजे। यही वजह है कि उन्हां दा फिल्मोग्राफ विच कई बेहतरीन कहानियां शामिल हैगियां ने जो रिलीज दे समय का बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई पर अज फिल्मा हर सिनेमा लवर दी बकेट लिस्ट विच जरूर ने। दस दी उन्हां बेस्ट बेस्ट वालियां फिल्मा दे बारे विच पर पहला सुनो एक गीत।

जी तो वेलकम बैक, जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो द सोनी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए ऋषि कपूर दी दी बेस्ट फिल्मां जिहड़ियां थिएटर से फ्लॉप रहीयां पर सदाबहार हैगियां ने उहनां दे विच पहला नाम आउंदा हैगा जी मेरा नाम जोकर जो 1970 दे विच आई सी। जद वी बॉलीवुड दी सब तो वड्डी ते शानदार फिल्म की गल होगी तो राजकुमार राज कपूर की इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र हमेशा सब तो पहला किया जाएगा। ऋषि कपूर ने इस फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के नाल नेशनल अवार्ड जीतिया। फिल्म की कहानी एक जोकर की जिंदगी तीन वक् वक् पड़ावां ते उसके अधूरे प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। ऋषि कपूर ने इस विच राज कपूर के बचपन का रोल निभाया। रिलीज होने ते फिल्म इन्नी बुरी तरह के नाल फ्लॉप हुई कि कपूर परिवार कर्ज विच डुब गया क्योंकि दहाकिया दर्शकों न इसका लंबा रन टाइम और गहरा इमोशनल कंटेंट पसंद नहीं आया। पर साल बाद जब फिल्म नू दोबारा देखा गया तो इस नू एक टाइमलैस मास्टरपीस मनिया गया थे। आज दुनिया भर में सब तो ज्यादा देखी जाने वाली सब तो वड्डी कल्ट फिल्मों के विचों एक हैगी है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी वंसर ओवर एम ते जी आचे संदेश और दिनाल से बने हुए। अगला जिहड़ा नाम है जी वह है बहुत ही शानदार जी मूवी कर्ज जो 1980 दे आई सी। सुभाष कई दे डायरेक्शन विच बनी कर्ज एक जबरदस्त म्यूजिकल थ्रिलर है जो पुनर्जन्म अते बदले दे बैकग्राउंड ते बनी हुई है। इस ने बॉलीवुड विच सस्पेंस अते म्यूजिक ते कंबीनेशन नूं फिर तो प्रभाषित किया। ऋषि कपूर ने एक रॉक स्टार मोंटी का रोल निभाया जो अपनी मौत अते अपनी पिछली जिंदगी दे कातल नाल अपनी मां दी बेइज्जती दा बदला लैंदा है। हैरानी दी गल ए है कि जद फिल्म 1980 विच थिएटर ते आई ना तां इह बॉक्स ऑफिस ते पूरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई। उस समय रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी दे आसपास दी हाइप दा सामना करना पिया जिस नाल फ्लॉप घोषित कर दिता गया। पर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल अते ऋषि कपूर दे मशहूर गाने ओम शांति ओम द म्यूजिक समय दे नाल इन्ना अमर हो गया कि इस फिल्म नू बॉलीवुड दे इतिहास विच सब तो वधिया थ्रिलर फिल्मां दी जगह मिल गई। आने वाले सालां विच इस फॉर्म

0: जी आयनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 AM ते जी आरचे संदेश अलग दराज से बने हुए। अगली जड़ी फिल्म है कि इस लिस्ट विच उसका नाम है जी दूसरा आदमी। 1977 यानी कि 1977 दे विच आई सी। यश राज बैनर दे थले रमेश तलवार दे डायरेक्शन विच बनी दूसरा आदमी। रिश्तियां दे बारे विच एक बोल्ट कॉम्पलैक्स अते अपने समय तो अग्गे दी फिल्म सी। ऋषि कपूर राखी गुलजार अते नीतू सिंह दे लीड रोल वाली ये फिल्म एक वड्डी उम्र दी औरत राखी दे इर्द गिर्द घूमदी है जो अपने गुजरे हुए लवर दी इमेज एक बहुत छोटी आदमी ऋषि कपूर विच देखती है जिस नाल दोनों दे विचकार एक अजीब इमोशनल टकराव शुरू हो जाता है। 1970 दे दहाके दे ट्रेडिशनल अते कंजरवेटिव इंडियन सोसाइटी नूं अजिहे अलग अते कॉम्पलैक्स इंसानी रिश्तियां नूं अपनाउणा मुश्किल लगता सी जिस दे चलदे बॉक्स ऑफिस ते इस नूं ठंडा रिस्पोंस मिलिया अते ए फ्लॉप हो गई। पर अज दे जमाने विच जद लोक मॉडर्न रिश्ते अते साइकोलॉजिकल टकरावां ते आधारित सिनेमा पसंद करदे ने तां ऋषि कपूर दी जबरदस्त परफॉर्मेंस अते फिल्म दी दिलचस्प स्क्रिप्ट नूं एक क्लासिक मन्निया जांदा है।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहनगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेती रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 ते जी अच्छे संदेश अलग दिन बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच आउंदा है जमाने को दिखाना है। नासिर हुसैन दे डायरेक्शन विच बनी जमाने को दिखाना है एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है की है जिस विच ऋषि कपूर दे नाल पद्मिनी कोल्हापुरी सी। नासिर हुसैन अते ऋषि कपूर ने पहले ब्लॉकबस्टर हम किसी से कम नहीं सी ए दिती सी, इसलिए इस फिल्म तो भी बहुत उम्मीद सी। फिल्म दा म्यूजिक आई जी बर्मन ने बनाया सी अते खासकर ऋषि कपूर दा गाना दिल लेना खेल है दिलदार का जो पहाड़ा विच शूट किया गया सी एक कल्ट चार्ट बस्टर बनया हुआ है। रिलीज होने ते दर्शकों को कहानी थोड़ी पुरानी अते किसी पिटी लगी जिस दे कारण फिल्म थिएटर विच रिलीज हुई अते बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद विच साल बाद ना ऋषि कपूर दी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स उन्हां दी कॉमिक टाइमिंग अते बेहतरीन गाणियां ने फिल्म नू यूथ ऑडियंस वल्लों वार वार देखण ते मजबूर कर दिता अते अज वी ए टीवी ते सब तो पॉपुलर हल्के फुल्के फिल्मां दे विचों एक है।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी आनू जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी 101.0 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राही बदल गए थे। फिल्म रिलीज हुई सी 1985 दे विच। रवि टंडन दे डायरेक्शन विच बनी राही बदल गए ऋषि कपूर दे करियर दा एक होर छिपिया होया हीरा है, जिसनु रिलीज होण ते पहचान नहीं मिली, जिसदे बाद विच हकदार सीगे उदो। इस फिल्म विच ऋषि कपूर ने शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरी वर्गे जानिया मानिया एक्ट्रेसिस दे नाल डबल रोल किया। फिल्म की कहानी गलत फहमिया प्यार और परिवारिक भावनावां विच फसे किरदारा दे इर्द गिर्द खूबसूरती नाल बुनी हुई है। आरजी बर्मन का म्यूजिक इसकी सब तो वड्डी यूएसपी सी। 1980 दे दहाके जद स्क्रीन ते एक्शन ते बेरहम विलन आम गल सी, इस शांत ते प्यारी लव स्टोरी नू थिएटर ते आम दर्शकां ने नकार दिता ते फिल्म बॉक्स ऑफिस ते पिछे रह गई। हालांकि अज दे समय विच जद लोग सिर्फ परिवारिक थीम ते मधुर म्यूजिक वालियां फिल्मां लभदे हैगे ने, तां यूट्यूब ते ओटीटी प्लेटफॉर्म ते फिल्म दे व्यूज ते तारीफ साबित करदी है कि इसने दर्शकां दे नाल गहराई नाल जुड़ा महसूस किया है।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
2: They secret.
3: Yo, Sean.
4: Oh, tumbi khitti aata nukh di nak tak mere raahan di makama naal. Oh, mere raahan di makama naal pak thak. Sahaj subah nu rakh.

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर ओवर एम ते चार छे संदेश और एक दिन आप सी बने हुए। अगली फिल्म है की है जेडी उसका नाम है जी आ ब्लॉट चले। ऋषि कपूर अपने पूरे करियर विच एक शानदार एक्टर सी पर एक डायरेक्टर दे तौर ते उन्होंने 1999 विच ऐश्वर्या राय ते अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म आ ब्लॉट चले बनाई जो उन्होंने दिल के बहुत करीब सी। ए फिल्म विदेश विच रहने वाले भारतीयों दे अपने कल्चर ते उन्होंने स्ट्रगल ते अपने मुल्क वापसी की एक खूबसूरत इमोशनल कहानी सी। रिलीज होने ते फिल्म की स्लो ते सीरियस कहानी दर्शकों को पसंद नहीं आई जिसका नतीजा ए रहा कि ए बॉक्स ऑफिस ते बुरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई। हालांकि अज दे दौर विच जद लोग फैमिली वैल्यूज जोर देन वाला ते अपनी जड़ा दे वाल लौटन वाला सिनेमा पसंद कर रहे ने तां ऋषि कपूर दा इकलौता डायरेक्ट एडवेंचर अपनी सीरियसनेस ते मेलोडियस म्यूजिक दे नाल एक मास्टरपीस दे तौर ते याद किया जाता है।

हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
13: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी फ्राइडे मेरी तरफ से। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा कहना तो नहीं चाहिए, नजर लग जाएगी, लेकिन फ्राइडे थोड़ा जल्दी नहीं आ जाता आजकल? वेल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि फ्राइडे थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। क्या आपने भी ये फील किया? आप लोग बोलोगे कि क्या कह रही हो निविया, इतने दिनों के बाद फ्राइडे आया है, मतलब हमें तो ऐसा लग रहा था जिंदगी बीत जाएगी, फ्राइडे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डोंट वरी, फ्राइडे आ गया है और जबरदस्त तरीके से आया। ऑफ कोर्स हम जबरदस्त प्रोग्राम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और प्रोग्राम मजेदार होता है बढ़िया गानों के साथ। गपशप होनी चाहिए मजेदार, तभी तो आता है स्वाद। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल के साथ, एक ऐसा रिचुअल जो हमें हेल्दी, हैप्पी और काम और प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, यानी कि लंबी गहरी सांसों का वो जादू जो जब चलता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ जो है वो हल्का लगता है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते अब जरा करते हैं शुरुआत खूबसूरत से गाने के साथ। जी हाँ, खूबसूरत सा गाना कौन सा होने वाला है? वेल, ये है सितारे फ्रॉम द मूवी 21। अब 21 जो है वो एक सोल्जर मूवी है, सो ऑफ कोर्स इफ यू लाइक दैट सॉर्ट ऑफ मूवीज यू कैन गो फॉर इट। एंड इसका ये गाना जो है वो बहुत ही खास है, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी से, क्योंकि मजेदार है ये गाना और मजेदार तो हमें रहना पसंद ही है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो जरा बात कर लें मौसम की और क्या कह रहा है मौसम आज के लिए और वीकेंड के लिए, यानी कि अगले 2 दिन के लिए। क्योंकि भाई वीकेंड है तो बाहर जाकर मस्ती करना तो बनता है, लेकिन मस्ती तो तभी होगी अगर बारिश नहीं होगी या मौसम सुहाना रहेगा, और सुहाना रहेगा तो मस्ती के जो है मजा वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सो ऑफकोर्स सबसे पहले आज का टेम्परेचर है, मैक्सिमम रहा 22 डिग्री सेल्सियस तक, अभी की अगर बात करें तो 20.4 डिग्री सेल्सियस तक है टेम्परेचर, वहीं फील आपको हो रहा है 17.7 डिग्री सेल्सियस तक। जी हाँ, और अगर रात की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे। नो चांसेस ऑफ बारिश, मतलब 30% चांसेस थे, बट ऑफकोर्स वो कहीं कहीं पर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो सकती थी, लेकिन अभी के लिए मुझे सब कुछ एकदम बढ़िया नजर आ रहा है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि सूरज जो है वो आपको मिलने वाला है, रोशनी जो है वो आपको मिलने वाली है। अब सैटरडे की अगर बात करें तो बारिश मुझे यहां पर थोड़ी सी होती हुई दिख रही है, बट वो 40% चांसेस है, मतलब कुछ इलाकों में बारिश होने वाली है। जी हाँ, कुछ इलाकों में होगी बारिश विद 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, बट कल जो है वो रात का टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाएगा, 9 या 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और संडे की अगर बात की जाए तो अगेन 30% चांसेस है, थोड़ी सी क्लाउड सिचुएशन है, सूरज भी निकलेगा, बीच में थोड़े बहुत बादल आपको मिल सकते हैं विद 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं है कि मौसम आपको कह रहा है कि आप बिल्कुल ही नहीं निकल सकते हो, बीच में थोड़ा बहुत जो है वो इसके सिचुएशन होने के चांसेस है बारिश के, या फिर ऐसा हो सकता है थोड़ी सी बादलों भरी सिचुएशन रह सकती है, बट दैट डजंट मीन कि आप बाहर नहीं निकल पाओ, क्योंकि आज सच कोई भारी भरकम बारिश मुझे नहीं दिख रही है, या फिर गलत और यह खराब मौसम मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप बाहर जा सकते हैं, खासकर संडे को तो आप डेफिनेटली बाहर जा सकते हैं। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ ऑगस्ट 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, क्योंकि इसके बाद आपको अपनी फरमाइशें करने का मौका अगले मंडे को मिलने वाला है। जी हाँ, मतलब कल और परसों आपको छुट्टी होगी, लेकिन कल टॉप 10 हॉट 10 में आपको फरमाइशें करने को नहीं मिलेंगे। मतलब मिलने तो हम आपसे कल भी आएंगे, पर फरमाइशें आप कल नहीं कर पाएंगे। सो आज ही कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और अपने पसंदीदा गाने ले आइए जल्दी से, क्योंकि आपके गानों में जो दम है वो तो मैंने कहा है ना, दम बिरयानी में भी नहीं है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से फोन उठाइए। आपको नंबर डायल करना है और नंबर है +91 8288 71701। आई रिपीट, +91 8288 71701। तो बस फिर बिना देर किए जल्दी से आइए अपनी फरमाइश के साथ। और अगर कोई गाना आप चाहते हो किसी को डेडिकेट करना, उनको थोड़ा स्पेशल फील करवाना, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, आई एम गोना हेल्प यू विद दैट। सो जल्दी से आ जाइए। और इसी के साथ यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, इसी के साथ कहा जाता है कि अगर आप अधूरी बात करेंगे तो सामने वाला कुछ भी उसका मतलब निकाल सकता है, कुछ भी। जी हाँ, तो उसी का जो है एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सो एक डॉक्टर कहता है अपने पेशेंट से, डिड यू फॉलो माई एडवाइस अबाउट ईटिंग नट्स आफ्टर वर्कआउट। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर पूछता है अपने पेशेंट से, डिड यू फॉलो माई एडवाइस अबाउट ईटिंग नट्स आफ्टर वर्कआउट। तो पेशेंट सामने से कहता है, ऑफ कोर्स एवरी वर्कआउट। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं हर वर्कआउट के बाद खाता हूँ। जी हाँ, तो डॉक्टर कहता है, विच नट्स एग्जैक्टली यू आर हैविंग। तो सामने से पेशेंट कहता है, वॉलनट्स, आलमंड्स, पीनट्स। जी हाँ, डॉक्टर ही कहता है कि विच नट्स एग्जैक्टली, पीनट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, कौन से नट्स खा रहे हो तुम? तो सामने से पेशेंट कहता है, डोनट्स। जी हाँ, डोनट्स खा रहा हूं मैं। अब डॉक्टर को बोलना चाहिए था ना कि ये खाओ, पीनट्स खाओ, वॉलनट्स खाओ, आलमंड्स खाओ, ये सब चीजें बोलनी चाहिए। नट्स बोलोगे तो कोई कुछ भी समझ सकता है, नट्स तो डोनट्स भी होते हैं ना, राइट? सो ऐसे में पेशेंट जो है वो कुछ गलत नहीं कर रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि आगे से आपको कुछ भी बोलना हो, मतलब किसी को कुछ समझाना हो, किसी को कोई चीज बतानी हो और किसी को कोई एडवाइस देनी हो, तो पूरी दीजिएगा, आधी अधूरी मत दीजिएगा, क्योंकि सामने वाला कोई भी मतलब निकाल सकता है। अभी आप ये देख लीजिए, डॉक्टर ने कहा था नट्स खाने को और सामने वाला पेशेंट खा रहा है डोनट्स, क्या बात है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, आपको इश्क वाला लव करना है या लव वाला इश्क करना है, मोहब्बत वाला इश्क करना है या इश्क वाली मोहब्बत करना है, मतलब वो आपके ऊपर है। मतलब प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार करना बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स को हमारे दिल में जगह देने जैसा है। मतलब प्यार में जो आप फील करते हैं ना, वो फीलिंग्स आपको इस दुनिया में और कोई भी चीज़, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं दे सकती। और अब आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं विजन में ऐसा भी नहीं है, अगर हमें रॉल्स रॉयस मिल जाएगी तो शायद हमें वैसी ही फीलिंग आ जाएगी। उसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है, पॉसिबल है। वी आर टॉकिंग अबाउट रोल्स रॉयस, बट प्यार वाली फीलिंग जो है और प्यार वाली जो खुशी है, दैट इज डिफरेंट। या और ये मैंने नहीं, बहुत बड़े बड़े पोइट्स ने कहा है, बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने कहा है। जी हाँ, और इससे पहले मैं राइटिंग की दुनिया में निकल जाऊं और कोई कहावत आपके सामने ले आऊं और आप लोग बोलो नहीं निव्या नहीं, गाने के साथ साथ कहावत भी तुमको बैन है, नहीं बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने बोला तो मैंने समझ लिया। यहां पर अब एक बहुत ही खूबसूरत फरमाइशी गीत हमारे पास आया, तो मैंने सोचा कि उसे प्ले कर लिया जाए। ये फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर आयुष की तरफ से। जी हाँ आयुष जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है। गाने का नाम है ख्वाब देखूं या ना देखूं। जी हाँ, और ये गाना जो है वो लिटरली हमारे टॉप 10 हॉट 10 के लिस्ट में भी ट्रेंड कर रहा है काफी वक्त से। जी हाँ, मूवी इतनी अच्छी नहीं है पर गाना बेहद प्यारा है, और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इसके

बात है, इतनी सारी रील्स बनाई गई हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं उसके बारे में। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच आयुष हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा अरिजीत सिंह की आवाज में ख्वाब देखूं आपके लिए।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
10: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है. इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
11: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
12: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
11: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
12: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
11: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
12: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
13: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर. याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
14: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
15: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
16: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
17: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
16: ऐसा क्या खास है वहाँ?
17: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
16: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
17: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
18: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. तो दोस्तों, बात कर ली जाए मूवीज की, क्योंकि है आज फ्राइडे. और फ्राइडे का मतलब क्या है? वेल ऑफ कोर्स मूवीज. क्या क्या आपको मिलने वाला है देखने को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, यानी कि थिएटर्स में. सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दिल दीवाना हो गया. जी हाँ, ये एक बॉलीवुड मूवी है जिसको आप देख सकते हैं. और ये कोई बहुत बड़े बैनर की मूवी नहीं है, बट ये ड्रामा, फैमिली और रोमांटिक मूवी है. इफ यू वांट टू वॉच इट, यू कैन गो फॉर इट. जी हाँ, इसी के साथ भाई तेरा स्टार है. जी हाँ, अगर आप राघव जुयाल के फैन हो, आपको लगता है कि वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। जी हाँ भाई, तेरा स्टार है ये कॉमेडी और थ्रिलर है, मतलब थ्रिलर और कॉमेडी दोनों आपको एक साथ मिलने वाले हैं। कैसा होगा ये कॉम्बिनेशन, पहले ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसका ट्रेलर देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या आपको ये मूवी देखनी है या आपको नहीं देखनी है। जी हाँ, इसी के साथ एक और मूवी है जो कि है भारत के यानी कि इंडिया के स्टेट तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की मूवी। जी हाँ, सो उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल फिगर तो बना ही लिया है, लेकिन ऐसी ही एक मूवी भी उन्होंने की है जिसमें उन्होंने जन नेता के कैरेक्टर के रूप में सबको जो है एंटरटेन करने की सोची है। जी हाँ, इसमें वही है, इसमें विजय है और ये आपको नजर आने वाले हैं इसमें। जी हाँ, एक्शन ड्रामा पॉलिटिकल, दीज आर द जॉनर्स दिस मूवी इज अबाउट। जी हाँ, इसी के साथ अगर आप फन मूवी देखना चाहते हो तो इस हफ्ते तो नहीं ऐसा कुछ आया है, लेकिन पिछले से पिछले हफ्ते आपके लिए एक मूवी आई है जो कि काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, और ये मूवी अभी से एंटरटेनिंग नहीं बनी है, बहुत पहले से एंटरटेनिंग है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट धमाल 4। जी हाँ, धमाल 4, जिसमें आपको सब मजेदार एक्टर मिलने वाले हैं लाइक अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और सारे के सारे वो गजब के लोग जिन्होंने धमाल सीरीज को मेमोरेबल और लेजेंडरी बनाया है। जी हाँ, ये एक ऐसी मूवी है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, मजे से देख सकते हो, आप हंसोगे, आपको ऐसा भी फील होगा ये क्या हो गया या ऐसी भी फीलिंग्स आपको आ सकती है। सो ये है एडवेंचर एंड कॉमेडी मूवी, और अगर आपने धमाल नहीं देखी तो जरूर देखिए क्योंकि ये मूवी है धमाल 4 यानी कि धमाल सीरीज की फोर्थ मूवी। इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, कल भी मैंने थोड़ी बात की थी, बट पहले हम आपको सुनाने वाले हैं एक और मजेदार सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ फ्राइडे का दिन है तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं उन मूवीज की जो आप देख सकते हैं थिएटर्स में जाके, क्योंकि वीकेंड पे आउटिंग होनी चाहिए। और वो आउटिंग अगर मूवी से रिलेटेड है तो क्या बात है, वो पॉपकॉर्न, वो सॉफ्ट ड्रिंक और साथ में मूवी का मजा, क्या बात है जी। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा डोंट वरी, अभी अपने घोड़ों को जरा थोड़ी ब्रेक दीजिए क्योंकि यहाँ पर अभी फ्राइडे ही है। जी हाँ, कल और परसों आएगा वीकेंड। चलिए कोई नहीं, प्लानिंग तो हम कर ही सकते हैं, राइट। सो मैं आपको बता रही थी मूवीज के बारे में, अब जरा चलते हैं हॉलीवुड मूवीज की तरफ, जो कि है दो बहुत बड़ी मूवीज लगी हुई हैं। जी हाँ, एक है मार्वल की तरफ से और एक है क्रिस्टोफर नॉलन की तरफ से। क्रिस्टोफर नॉलन वाली तो आपको पता ही है, उसके बारे में मैं कितनी बात कर चुकी हूं, द ओडिसी। जी हाँ, द ओडिसी। और साथ में इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मूवी जो है वो जबरदस्त है। क्रिस्टोफर नॉलन इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर और उसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर, क्या क्या नहीं इस इंसान ने हमें दिया है, लेजेंडरी। सो क्रिस्टोफर नॉलन की ये मूवी है जिसमें मैट डेमन है, और स्टार कास्ट तो इसकी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आपको लगेगा सारे हॉलीवुड के स्टार्स इसी मूवी में आ गए हैं क्या, या आसमान के सितारे और हॉलीवुड के सितारे सब आपको इस मूवी में मिल जाएंगे। मैट डेमन एज ओडिसियस आपको मिलने वाले हैं, और टॉम हॉलैंड आपको इसमें मिलने वाले हैं, एन हाथवे इसमें आपको मिलने वाली है, जेंडे मिलने वाली है, लुपिटा न्योंग मिलने वाली है, एंड खासकर रॉबर्ट पैटिंसन एज अ विलन आपको मिलने वाले हैं। आप लोग बोलोगे कि ट्वाइलाइट एरा से अभी हम बाहर नहीं आए थे, वो हॉट और चॉकलेटी बॉय एरा से हम बाहर नहीं आए थे और अब वो विलन बन गए, ऐसा कैसे हो सकता है। वेल, मैं आपको बता रही हूं कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो कैरेक्टर है इसमें एज अ विलन बहुत जबरदस्त है, सो डोंट मिस इट। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जो कि मैंने पहले भी कही थी इसके रिव्यू में, कि ये मूवी जो है वो अच्छी है, स्टोरी टेलिंग वाइज बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और क्रिस्टोफर नॉलन ने अपने फेवरेट टॉपिक को ही उठाया इसमें, एंड दैट इज अ होमकमिंग। आप उनकी कोई भी मूवी देख लो, कोई ना कोई घर वापस आने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ओडिसियस यानी कि मैट डेमन घर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो या, आप ये मूवी देख सकते हैं, और ये है आईमैक्स की मूवी। सो अगर आप आईमैक्स थिएटर में देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इतना पैसा खर्च किया है भाई क्रिस्टोफर नॉलन ने, इतना तो बनता है। जी हाँ, एंड ये मूवी है ग्रीक माइथोलॉजी के एक चैप्टर पर। जी हाँ, इसी के साथ एक नई मूवी जो कि इस हफ्ते आपको मिलने वाली है, एंड दैट इज द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मैंने कहा था ना, एक मूवी आपको क्रिस्टोफर नॉलन की तरफ से मिलेगी और दूसरी आपको मिलने वाली है मार्वल की तरफ से। नाउ इसके बारे में मैं क्या ही कहूं, इसमें टॉम हॉलैंड है, इसमें जेंडेया है, और इसमें एक और एक्ट्रेस है जो कि स्पॉइलर से रिलेटेड है, बट हो सकता है वो स्पॉइलर ना भी हो। वेल, आई एम नॉट गोना टेल यू अबाउट हर, लेकिन एक और जबरदस्त एक्ट्रेस आपको इसमें मिलने वाली है जिसको शायद आपने सोचा भी नहीं था। अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको शायद पता चल जाएगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इज इन थिएटर्स एंड यू कैन वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। मैंने पहले ही कहा था कि थिएटर के लिए अगर आप चाहते हो मूवी थिएटर्स में देखना, आपको पहले ही टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्पाइडरमैन की बात हो रही है, आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी अदरवाइज, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग। तो कर लीजिए पहले ही, क्योंकि पहले टिकट्स बुक करेंगे तभी जा पाएंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। ये सारी की सारी मूवीज आप देख सकते हैं, और अब मैं आपको एक बहुत मजेदार सा गाना सुनाने वाली हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगी टॉम हॉलैंड जो कि ओडिसियस में यानी कि द ओडिसी में भी हैं और स्पाइडरमैन में भी हैं, दोनों ही मूवीज उनकी लगी हुई हैं थिएटर्स में और दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक कहानी, एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा जो कि इन दोनों मूवीज से रिलेटेड है एंड रिलेटेड है टॉम हॉलैंड से। लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और गाना, थोड़ा डिस्को डिस्को कर लेते हैं पहले। There's some...

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोह

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है.
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि द ओडिसी एंड स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे लगी हुई है थिएटर्स में, और दोनों ही मूवीज में टॉम हॉलैंड है और दोनों ही मूवीज में उनका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब एक में तो वो सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और दूसरी में भी उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ओडिसियस के बेटे का रोल कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर काफी है उस मूवी में. नाउ लेट मी टेल यू द स्टोरी अबाउट कैसे टॉम रॉथमैन ने उन्हें अलाउ किया इस मूवी का, यानी कि द ओडिसी, क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी का पार्ट बनने के लिए. अब आपको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन टॉम हॉलैंड ने इस स्टोरी के बारे में खुद ही बताया हुआ. टॉम हॉलैंड कहते हैं कि एक ही दिन इन दोनों पिक्चर्स की शूटिंग जो है वो शुरू होने वाली थी. मतलब ऑफकोर्स स्पाइडरमैन सीरीज का तो मैं हमेशा से ही पार्ट रहा हूँ, सो ऑफकोर्स मुझे पता था कि ये मूवी कब स्टार्ट होने वाली है. बट जब मुझे द ओडिसी ऑफर हुई और ओडिसी के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने मुझे डेट दी, तो उसके बाद मैंने टॉम रॉथमैन से बात की. टॉम रॉथमैन वही है जो कि डायरेक्टर हैं ऑफकोर्स अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के. तो टॉम हॉलैंड वहां पर कहते हैं कि मैंने टॉम से बात की एंड टॉम रॉथमैन इज सच अ स्वीट हार्ट. उन्होंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग जो है वो आगे कर दी. कैन यू इमेजिन इतने बड़े बजट की मूवी आगे करना क्या मतलब होता है उसका. मतलब इट इज नॉट पॉसिबल. आपको इतना नुकसान होता है फाइनेंशियली और दूसरी और फ्रंट पे भी. लेकिन टॉम रॉथमैन चाहते थे कि हाँ ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी का पार्ट बनना, वो भी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बनना, उसके लिए मैं अपनी मूवी को थोड़ा आगे कर सकता हूँ. आप इमेजिन कीजिए क्रिस्टोफर नॉलन को कितनी इज्जत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में दी जाती है. अब क्रिस्टोफर नॉलन को इज्जत देने के साथ साथ टॉम रॉथमैन ने इतना कह दिया कि ठीक है आई एम गना पोस्टपोन दिस शूटिंग ऑफ ब्रांड न्यू डे यानी कि स्पाइडरमैन एंड यू कैन वर्क ऑन इट. एंड दैट्स हाउ टॉम हॉलैंड जो है वो इसका पार्ट बन पाए. क्योंकि अगर स्पाइडरमैन की शूटिंग आगे नहीं होती तो टॉम हॉलैंड द ओडिसी में काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले ही जो स्पाइडरमैन सीरीज है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं. जी हाँ, मतलब वो पहले ही 2-3-4 पिक्चरों का जो कि स्पाइडरमैन सीरीज की है उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर चुके हैं. सो ऐसे में अगर स्पाइडरमैन के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स उनको इजाजत देते वो तभी कर पाते. लेकिन टॉम Rothman is such a sweetheart indeed, and that's how Tom Holland could become a part of the Odyssey. And Tom Holland sach mein shukriya ada karte hain ki kya baat hai, thank you Tom. And main sach mein ye kahungi ki ye cheez aapko dekhne ko nahi milti hai. Sab chahte hain ki hamari cheez ko pehle jo hai wo tawajjuh mile, hamari पिक्चर में जो स्टार है वो पहले काम करे, किसी और की पिक्चर में क्यों काम करे. और ये चीज हमें बहुत रेयरली देखने को मिलती है. बट या दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड टॉम हॉलैंड के लिए बहुत ही अच्छा साल जो है ये जा रहा है. द ओडिसी जो है वो लिटरली रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और अब स्पाइडरमैन आ गई है. सो या गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी. इसी के साथ यहाँ पर एक गाना जो कि हम प्ले करने वाले हैं, ये है एक फरमाइशी गीत हमारी बहुत ही क्यूट लिसनर के लिए. जी हाँ, हमारी क्यूट लिसनर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो सच में बहुत ही क्यूट है. और विनी जी हमारी बहुत ही क्यूट लिसनर, उन्होंने फरमाइश की है गाने की और गाना हम उनके लिए प्ले करने वाले हैं क्यूटी पाई, क्योंकि वो खुद भी क्यूट है तो आई गेस क्यूटी पाई डज मेक सेंस, राइट. सो थैंक यू सो मच विनी जी, हमेशा हमारे प्रोग्राम को, हमें अपनी जिंदगी के इन प्यारे प्यारे लम्हों का पार्ट बनाने के लिए और हमेशा हमें याद रखने के लिए, खासकर मुझे. थैंक यू सो मच, वी लव यू. एंड वो मना रही हैं तो उन्हें चाहिए था कोई मजेदार सा गाना, तो क्यूटी पाई हम उनके लिए प्ले कर रहे हैं. थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए विनी जी, ऐसे ही सुनते रहिए. और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब बात होने वाली है खबरों की। जी हाँ, खबरों की तरफ रुख करने का वक्त आ गया। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा फ्राइडे है आज, तो खबरों के बारे में नहीं भी बात करोगी तो चलेगा। अरे नहीं, थोड़ा तो आपको अपडेटेड रखना जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से, यानी कि भारत से क्या खबर आ रही है। एक बहुत ही दुखद खबर है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिर गई है और वहीं 7 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के बीच भिवंडी में एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई। इमारत के मलबे में 2 लोग फंसे हुए हैं। इमारत जर्जर हो चुकी थी। स्थानीय विधायक महेश चौगुले ने बताया कि इस इमारत को खतरनाक घोषित कर दिया गया था। नागरिकों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालांकि कुछ लोग अनजाने में इस इमारत के खंभों पर काम कर रहे थे। अनुमान है कि उनमें से कुछ मजदूर थे और एक ही परिवार के सदस्य इस घटना में फंस गए। बचाव दल तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इमारत बारिश की वजह से गिरी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: Priya, next month Mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
6: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ बहुत बड़ी खबर आई है ट्रंप की तरफ से। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ये इंसान वैसे हमेशा कुछ झूठ ही बोलता है, ये गड़बड़ी बोलता है, पर चलिए ठीक है, बता दीजिए आरजे निव्या क्या कह रहा है। वेल, ट्रंप का दावा है कि बोर्ड ऑफ पीस ने हमास को हथियार छोड़ने के लिए राजी किया है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास और दूसरे सशस्त्र समूहों के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वे हथियार छोड़ देंगे। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि संगठन ने गाजा में पूरी तरह हथियार छोड़ने के बोर्ड ऑफ पीस के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा वह इस बारे में आधिकारिक बयान जल्द जारी किया जाएगा। हालांकि इसराइल की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, जो कि अब आ गई है, विच आई एम गोना टॉक अबाउट। ट्रंप ने कहा कि जैसे जैसे निरस्त्रीकरण का काम पूरा होता जाएगा, इसराइली सेना गाजा से पीछे हटेगी। उन्होंने इस समझौते को गाजा में अंततः एक नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिका की मध्यस्थता वाले गाजा सीज फायर प्लान के दूसरे चरण में हमास को हथियार छोड़ने के लिए मनाना शामिल है। इस चरण में गाजा के पुनर्निर्माण की योजना भी शामिल है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों के बारे में बात हो रही है और ट्रंप की गई घोषणा के बारे में बात हो रही है कि कैसे हमास रेडी हो गया है हथियार छोड़ने के लिए और अब इसराइल जो है वो वापस आएगा। लेकिन सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि इसराइल इसके बारे में क्या कह रहा है और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे थैंक यू किया ट्रंप ने उस पीस कमेटी का। जी हाँ, तो सबसे पहले गाजा शांति योजना पर इसराइल का रुख साफ नहीं है। जी हाँ, समाचार एजेंसी राइटर्स ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अमेरिका की मध्यस्थता वाली गाजा शांति योजना को लागू करने को लेकर काहिरा में मध्यस्थों और हमास के नेताओं के बीच बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इस इसराइली अधिकारी ने कहा कि इसके लिए जो शर्तें रखी गई वो संतोषजनक नहीं है। ट्रंप की ओर से हमास के हथियार छोड़ने के लिए राजी होने की घोषणा के बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से बताया कि हमास के वार्ताकारों बोर्ड ऑफ मध्यस्थ देशों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली ऑफिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव इजरायल की मांगों पर खरा नहीं उतरता। इससे पहले इजरायली मीडिया में चल रहे रिपोर्टों में कहा गया था कि इजरायल हमास के साथ चर्चा में चल रहे इस समझौते के खिलाफ था। वहीं ट्रंप कर रहे हैं थैंक यू। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वॉर ऑफ पीस के प्रस्ताव को कैसे लागू किया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर हमास के हथियार छोड़ने पर सहमति देने के बाद ये ट्रंप की 20 सूत्री योजना को लागू करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। इस समझौते को सावधानी के साथ तय चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे निरस्त्रीकरण पूरा होता जाएगा, इजरायली सेना गाजा से पीछे हटती जाएगी। इसके बाद इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स एक नई फिलिस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि गाजा उसके निवासियों और पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षित रहे। ट्रंप ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए मिस्र, कतर और तुर्की को भी धन्यवाद किया है।

जी हाँ दोस्तों, मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ और ये शायद आपको बहुत ही दिलचस्प लगे या शायद आपको लगे क्या बकवास है, मतलब इस चीज के लिए इतना पागल होने की क्या जरूरत है। सो चीज ऐसी है कि जापान में एक बहुत बड़ी शॉप है जो कि पॉकेमोन कार्ड्स की है। अब इफ यू डोंट नो व्हाट पॉकेमोन कार्ड्स आर, यू आर मिसिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। जी हाँ, मतलब ये कार्ड्स लिटरली मिलियंस में बिकते हैं और इनका ऑक्शन होता है। सो यू कैन इमेजिन कि जो बहुत रेयर कार्ड्स होते हैं उनसे आप मिलियंस एंड मिलियंस कमा सकते हो। और अभी कुछ वक्त पहले भी एक ऐसा ही कार्ड जो है वो खरीदा गया है जिसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए गए हैं। पर ये वाली शॉप क्यों इतनी चर्चा में है, आइए जरा मैं आपको बताती हूँ। सो वहां पर हुई है एक चोरी। जी हाँ, अपेरेंटली वहां पर हुई है एक चोरी और उस पोकेमोन कार्ड शॉप के ओनर ने कहा है कि अगर आप इसे बंदे को, ये जिसने हमारी इस शॉप पे आकर चोरी की है और हमारे कार्ड्स को उसने लूटा है, अगर आप इसे कोई भी, आप और कोई भी इसको पकड़ता है जिंदा, तो आपको $6,000 यानी कि $6,000 मिलने वाले हैं। और अगर जापानीज करेंसी में बात करें तो 1,000,000 येन की यहाँ पर रकम रखी गई है रिवॉर्ड के लिए। आप सोच सकते हो कि क्या बड़ी चीज है, राइट? मतलब 1,000,000 येन मिलने वाले हैं उस बंदे को जो कि ये करने के लिए तैयार है। अब आप सब बोलोगे कि वाह यार, मतलब फायदा तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अब हम जापान में नहीं है ना, तो हम भी उस बंदे को ढूंढ देते और $6,000 जो है वो चुपचाप अपनी झोली में कर लेते। बट आप ये सोचिए कि अगर $6,000 ये बंदा देने के लिए तैयार है किसी बंदे को जो ढूंढ के देता है इस चोर को, तो आप खुद सोचिए उन पोकेमोन कार्ड्स की कीमत कितनी होगी। जी हाँ, आप खुद सोचिए। जी हाँ, और इसने ये भी कहा है कि अलाइव, मतलब आपको जिंदा पकड़ना पड़ेगा। अगर जिंदा के अलावा कोई भी और सिचुएशन हुई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप जिंदा पकड़ लेते हो तो आपको $6,000 मिलेंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि सीधी सी बात है भाई, पोकेमोन कार्ड्स का बिजनेस कर लेते हैं, मालो माल हो जाएंगे। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, ऐसे तूफानी आइडियाज तुम्हें ही आते हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, और यहाँ पर शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निविया के साथ। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप भी डॉग ओनर्स हैं, अगर आप भी पेट पेरेंट हैं, खासकर आपके जो बच्चे हैं वो डॉग्स की फॉर्म में है, आप लोग बोलोगे कि नहीं शर्मा ये क्या बात हुई। ऑफकोर्स देयर आर मेनी पीपल जो कि अपने डॉग्स को अपना किड मानते हैं, मतलब अपना बच्चा मानते हैं। सो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका डॉग जो है वो खुश नहीं नजर आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एंजाइटी उसे रह रही है, थोड़ा सा सैड सा रह रहा है, तो शायद इसके पीछे ये रीजन है कि आप उसको उसका ड्रीम वॉक नहीं करने दे रहे हो। आप लोग बोलोगे हैं What are you talking about, Nivia? Well, dream walk का मतलब ये है कि जब भी dog खुशी से, पूरी तरह से, संतुष्टि से walk करता है, और जिसे उसकी dream walk कहा जाता है, it lasts about 1 hour and 7 minutes, मतलब 1 घंटा 7 मिनट उनकी वो dream walk जो है वो last करती है, and उसके साथ वो 16 बार यानी कि 16 times sniff करते हैं और 16 sniff spots वो ढूंढते हैं, और अगर इसमें से कुछ भी कम हो रहा है, एक मिनट कम या 16 स्निफ स्पॉट्स में से एक स्निफ स्पॉट जो है वो कम हो रहा है, दैट मींस आपका डॉग जो है वो अपनी ड्रीम वॉक नहीं कर पा रहा है। और आपको तो पता ही है आपके डॉग्स के लिए वॉक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो जो वॉकीज होती है उसके लिए तो वो सुबह से लेकर शाम तक सपना देखते हैं। So, अगर आप लोग लिटरली ये सोच रहे हो कि आपका डॉगी जो है वो ऐसे ही थोड़ा सा मतलब सुस्त सा लेजी सा रह रहा है, तो आप उसकी ड्रीम वॉक उसे नहीं करने दे रहे हो, और अगर आप चाहते हो आपके डॉगीज ड्रीम वॉक करें तो आपको 1 घंटा 7 मिनट तक उन्हें घुमाना पड़ेगा और एटलीस्ट 16 जगहों पर उन्हें स्निफ करने देना होगा, अदरवाइज वो ड्रीम वॉक नहीं मानी जाएगी। और ये मैं नहीं, स्टडीज ने प्रूव किया है। So, are you gonna do that or not? जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व नेंडी संगम कॉलेज फिजी के वाइस प्रिंसिपल और इंडियन सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के प्रधान तथा ब्रिस्बेन के संजय सुमेर और अजने सुमेर के पिता तथा चंद्रा सुमेर के पति ब्रिस्बेन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 1 अगस्त सुबह 9:30 से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स एंड क्रेमेटोरियम 329 होलैंड पार्क ब्रिस्बेन में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप रजने सुमेर जी को 0411-027-801 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
1: जी दोस्तों, इसी के साथ अब हम जाने वाले हैं सीधा अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ। और सेगमेंट है हमारा फेवरेट और आपका भी, सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि आपका भी है, मतलब हमारा है, हम सबका है। एंड मैं बात कर रही हूँ ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की। ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट इसलिए खास है क्योंकि पुराने गाने हम इसमें आपके लिए प्ले करते हैं। कोई भी नया गाना नहीं होता, पूरी पूरी कोशिश होती है कि गाने जो हैं वो पुराने हों, किस्से जो हैं वो भी पुराने हों, उस एरा के हों, उन स्टार्स की जुबानी वो किस्से आप तक पहुँचे, मतलब ऑफकोर्स हम आपको उन तक पहुंचाएं। और फिर उसी के साथ गाने भी आपको ऐसे सुनाएं कि आपको लगे वाह क्या खूबसूरत एरा थी, मतलब क्या कोई ऐसा लफ्ज लिखे तो कैसे कोई ना सुने, मतलब वैसी वाली फीलिंग जो है वो आपको आ सकती है। सो ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन आज ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में हम रफी साहब को याद करने वाले हैं क्योंकि आज ही के दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे। रफ़ी साहब हमारे लिए क्या मायने रखते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके जैसा आर्टिस्ट हमारी ये इंडस्ट्री देख नहीं सकती, उनके जैसा इंसान, उनके जैसी शख्सियत भी ये दुनिया फिर देख ना पाएगी। जी हाँ, तो सबसे पहले रफ़ी साहब को ही याद करेंगे और एक गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है और वो मेरे फेवरेट गानों में से है उनके। सो ये है मुझे इश्क है तुझी से, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी बातें।

दोस्तों जब रफी साहब की बात होती है ना, तो आपको तीन चार चीजें जो हैं वो हमेशा जो है वो आपके जहन में आएंगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ऐसा आर्टिस्ट तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। लिटरली देवर मेनी एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो फाइट करते थे और उनको होता था कि हमारे गाने रफी साहब गाएं, हमारे गाने रफी साहब ही गाएं, मतलब हम इस चीज से कोई समझौता नहीं करेंगे। इनफैक्ट कल ही मैं आपको बता रही थी कि कैसे राजकुमार तक ये मानते थे कि अगर मेरे गाने रफी साहब गाएंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, नहीं तो मैं सुपरस्टार नहीं बन पाऊंगा। इनफैक्ट इसी चीज की वजह से वो शमी कपूर के खिलाफ हो गए, उन्होंने शमी कपूर को बायकॉट कर दिया क्योंकि शमी कपूर ने रफी साहब के गाने अपनी आवाज के लिए लिए। जी हाँ, रफी साहब के गानों के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि बचपन से उन्होंने गाना तो सीखा ही था, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसके बारे में बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई हंसी वाला गाना या खुशी वाला गाना गाए तो रफ़ी साहब वो भी गा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई सैड गाना, ऐसा गाना जिससे दर्द जो है वो निकल कर एकदम बाहर आ जाए, तो वो गाना भी रफी साहब गा सकते हैं। अगर आप चाहें कि एक मस्ती भरा गाना जिसमें इतनी मस्ती हो, इतनी मस्ती कि जुबान से निकलते ही रफी साहब की आपके दिल जो है और आपकी बॉडी जो है वो मचलनी शुरू हो जाएगी, यू विल बी लाइक कि ओके मस्ती का माहौल है। आई मीन आपने सुना है गाना, राइट? मस्ती की बात होती है तो मुझे एक ही गाना याद आता है रफी साहब का, और वो है याहू चाहे कोई मुझे जंगली, मतलब ये इंसान क्या नहीं कर सकते थे। मतलब ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जो कि हर तरह का गाना गाते थे, एंड यू नो व्हाट व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट, उनको गाना गाना पसंद था, उन्हें अपनी आर्ट से इतना पसंद प्यार था, इतना प्यार था कि वो गाना गाने के लिए कुछ भी करते थे। अब किसी के पास पैसे होते थे उन्हें देने के लिए तो भी ठीक है, नहीं होते थे और उन्हें गाना पसंद है तो वो फिर भी गाएंगे, और इसीलिए रफी साहब को मसीहा भी कहा जाता था। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए रफी साहब का ही।

देखिए मोहब्बत किसी से होगी या नहीं होगी, लेकिन रफी साहब की गायकी से मोहब्बत पक्का हो जाएगी। जी हाँ, मतलब ऐसी मोहब्बत कि आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, आप इतना इमोशनल फील कर सकते हो। और ये मैं नहीं, मुकेश ने कहा था। जी हाँ, वही मुकेश जो उनके कंटेम्पररी थे, वही मुकेश जिन्होंने खुद बहुत सारे खूबसूरत गाने गाए हैं। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश कहते हैं एक कार्यक्रम के दौरान कि मेरे पिताजी ने गाना सुना रफी साहब का, एक बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, और उस गाने को सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने रफी साहब को फोन किया और रफी साहब को कहा, रफी मियां, मेरी अल्लाह से, भगवान से एक ही इल्तिजा है कि काश काश मुझे तुम्हारी जैसी आवाज दी होती, काश मुझे तुम्हारी जैसी आवाज दी होती, काश मैं तुम्हारे जैसा गा पाता। मतलब अगर मुझे कुछ चुनना पड़े, कुछ मांगना पड़े भगवान से, तो मैं तुम्हारी जैसी आवाज और तुम्हारी जैसी गायकी मांगता। जी हाँ, रफी साहब ये सुनकर खुद इमोशनल हो गए। मुकेश वहां पर आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे और वहां पर रफी साहब की आंखों से भी आंसू बहने लग पड़े। वो दोनों बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट बस एक दूसरे की इन भावनाओं में खोकर रह गए। रफी साहब बहुत ज्यादा इमोशनल थे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त की बात है, उनकी जो सोसाइटी थी, उनकी सोसाइटी में एक लेडी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जी हाँ, अब उनके पास ना काम था ना कुछ था, अब ऐसे में घर का पालन पोषण कैसे किया जाता। रफी साहब को इसके बारे में पता चला तो रफी साहब ने एक काम किया, एक ऐसा खूबसूरत जेस्चर जो कि वो दिखाते रहे, और वो उस लेडी को तब पता चला जब रफी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए कि मुझे ये जेस्चर दिखाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि रफी था। जी हाँ, वो जेस्चर वो था जब रफी साहब को पता चला कि उस लेडी के घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला, और वो कैसे अपना गुजारा करेगी, और उसके लिए अपने घर का गुजारा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो रफी साहब ने किसी और के नाम से उन्हें मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया। जी हाँ, वो मनी ऑर्डर वो हर महीने भेजते थे, हर महीने। जी हाँ, बिना किसी एब्सेंस के वो हमेशा उस मनी ऑर्डर को भेजते थे। गेस व्हाट, वो मनी ऑर्डर कब जाना बंद हुआ? वो मनी ऑर्डर तब जाना बंद हुआ जब रफी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर वो लेडी यही सोचती रही कि अब वो मनी ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कौन भेजता था, कैसे भेजता था, बस उसके पास पैसे आते थे और वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी वो जो तकलीफ थी कि वो कैसे पैसे कमाएगी, कैसे अपने घर का पालन पोषण करेगी, वो दूर हो गई थी जब रफी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। और उसने इसके बारे में तहकीकात करने की सोची, तब उस लेडी को पता चला कि रफी साहब थे वो जो उसे मनी ऑर्डर भेजा करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुश्किलात में थी। और रफी साहब को लगा कि मुश्किलात में कोई भी हो, अगर आप थोड़ी सी भी मदद किसी की कर सकते हो तो जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर एक और गाना रफी साहब का आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई म्यूजिक डायरेक्टर कोई गाना रिकॉर्ड करता था और उसे ऐसा लगता था कि जिस सिंगर को या जिस आर्टिस्ट को उन्होंने चूज किया है वो इतने अच्छे से उसे नहीं कर पा रहे, तो गेस कीजिए क्या बात होती थी वहां पर। वहां पर ये कहा जाता था कि प्लीज रफी साहब को बुलाइए, हमें नहीं लगता रफी साहब के अलावा इसे और कोई भी कर सकता है। वेल, ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि पहले से ही म्यूजिक डायरेक्टर्स को पता होता था कि ये गाना रफी साहब ही इसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, रफी साहब ही इस गाने को वो अंजाम दे सकते हैं जिसके बाद लोग इसे जन्मों जन्मों तक याद करेंगे। जी हाँ, अब रफी साहब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इंसान थे, बहुत ज्यादा शांत सुशील, मतलब उनको किसी से कोई पंगेबाजी कभी करनी ही नहीं थी। और ये मैं नहीं, उनके कंटेम्प्रेरीज ने कहा। जी हाँ, इनफैक्ट लता जी भी कहती थी कि अगर मैं रफी साहब के बारे में कुछ कहूँ तो मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत ही साफ और सुलझे हुए इंसान थे, किसी से कोई बैर नहीं, किसी के लिए कोई मैल नहीं, कुछ नहीं लेना देना उन्हें किसी से, उन्हें बस अपनी आर्ट से जो है वो रब्ता है, उन्हें अपनी आर्ट को अच्छे से पेश करना है, एंड दैट्स ऑल ही वांटेड। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि रफी साहब को किसी भी चीज का शौक नहीं था सिवाय खाने के, मतलब कोई गलत आदत रफी साहब को नहीं थी, ना वो शराब पीते थे, ना वो सिगरेट पीते थे, या ना कोई और चीज वो कंज्यूम करते थे बुरी चीज, बस खाने का शौक बहुत ही खतरनाक था। इतना खतरनाक कि एक बार जब वो लंदन गए थे अपने शो के लिए, जी हाँ अपने लाइव प्रोग्राम के लिए, अपने कॉन्सर्ट के लिए, तो वहां पर वो परफॉर्म करते रहे और उन्होंने देखा कि ये विलायती खाना जो है वो उन्हें जम नहीं रहा। अब वहीं पर ब्रिटेन में ही उनके बेटा और बहू भी रहा करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अब अगले शो में थोड़ा वक्त है, इतने में मैं वहां जाके वापस आ सकता हूँ शायद। उन्होंने फ्लाइट बुक की, सीधा अपने बेटे के घर पे पहुंच गए, वहां पर बहुत ही बढ़िया मस्त बिरयानी उन्होंने खाई, और फिर उसके बाद वो पहुंचे अपना शो करने के लिए वापस। अब लोग तो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ रफी साहब ही कर सकते हैं, मतलब इतना ट्रेवल किया सिर्फ खाने के लिए, खाना उनको हमेशा अच्छा चाहिए था, बाकी सब चीजों से कोई इतना मतलब नहीं था उन्हें। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, और ये रफी साहब का वो गाना है जिसने मुझे उनका दीवाना बना दिया था, और ये कहानी मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता मुझे आज भी बतानी चाहिए, बट या मैं 5 साल की थी जब मैंने पहली बार ये गाना सुना था, और ये पहला पुराना गाना मैंने सुना था और मैं इसकी फैन हो गई थी, एंड मैं बात कर रही हूँ लिखे जो खत तुझे की।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम अब खत्म होने वाला है। एक आखिरी गीत हम प्ले करने वाले हैं, अगेन वो भी रफी साहब का होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लाइंस आपके लिए बोलना चाहती हूँ, जो कि मेरी तरफ से नहीं है बल्कि हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से है। और विशाल जी रफी साहब के बहुत बड़े फैन है, वो रफी साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे गाने फरमाइश करते हैं। लेकिन आज उन्होंने कुछ लाइंस हमें यहाँ पर भेजी हैं, जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत लाइंस है। गीत का जन्म दिल से होता है, दिल की भावनाएं जब जुबान तक पहुंचती हैं तो वे शब्दों का रूप ले लेती हैं, वही शब्द गीत बनकर लोगों के दिलों में बस जाते हैं। एक सच्चा गीत समय की सीमाओं से परे जाकर आने वाली पीढ़ियों की अमानत बन जाता है। वाह, क्या खूबसूरत लाइन है। थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा गानों की तरह से, फरमाइशों की तरह, और यू नो ऐसे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और जी हाँ, रफ़ी साहब को आज हम याद कर रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब को हम हमेशा याद करते हैं, सिर्फ आज ही का दिन नहीं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रफ़ी साहब की जो कमी है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई आर्टिस्ट इस दुनिया में रफी साहब की जगह नहीं ले सकता। दैट्स अबाउट इट। इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को पूरी तरह से जमकर जिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं अब आपसे कल टॉप 10 हॉट 10 में, और इवनिंग वाइब में मुलाकात होगी मंडे को। बाय, सी यू, टाटा। ये लास्ट सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत गाना, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉन्ग टू एंड दिस सेगमेंट, क्योंकि हम रफी साहब के बारे में बात कर रहे थे और रफी साहब आज ही के दिन रुखसत हुए थे। तो आई गेस उनका, अगर उन्हें भी कुछ बोलने का मौका दिया होता तो शायद यही वो बोलते, और उन्हीं का गाना है ये। तो सुनते हैं इसका और फिर करते हैं बात।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: तेरी मैडम, आई एम योर ओनली मैडम।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। दक्षिण ब्रिस्बेन में अजीबोगरीब सड़क हादसा। ब्रिस्बेन के रॉकलिया इलाके में एक कार अचानक नियंत्रण खोकर हवा में उछलते हुए सीधे एक सिटी बस के साइड में जा घुसी। गनीमत रही कि बस खाली थी और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले चालक पर जुर्माना लगाया है। वहीं कैनमोर में चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार। ब्रिस्बेन के कैनमोर इलाके में सुबह सुबह एक घर में हुई घुसपैठ और चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकली हथियार और सामान बरामद किया गया है। वहीं ब्रिस्बेन 2032 की तैयारियों में पैरा पावर लिफ्टिंग ऑस्ट्रेलिया पैरा पावर लिफ्टिंग टीम की नजरें अब ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स और पैरालंपिक की ओर हैं। टीम अगले महीने होने वाले विक्टोरियन ग्रैंड प्रिक्स के साथ युवा खिलाड़ियों के लिए एक खास डेवलपमेंट कैंप भी शुरू कर रही है। वहीं एनआरएल में सिडनी रूस्टर्स की ऐतिहासिक जीत। रग्बी लीग में सिडनी रूस्टर्स ने नॉर्थ क्वींसलैंड काउबॉयज को 82-12 के अंतर से हराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये पिछले कई दशकों में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है। इसी के साथ ब्रिस्बेन में नाइट फीस्ट फेस्टिवल का आगाज। ब्रिस्बेन पावर हाउस में आज से विंटर नाइट फीस्ट आर्ट और फूड फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। शहरवासी यहां बेहतरीन पकवानों के स्वाद के साथ साथ शानदार लाइट और आर्ट प्रदर्शनियों का आनंद ले सकेंगे। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की नई रोबोटिक तकनीक। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के वैज्ञानिकों ने मांसपेशियों की गति को नापने वाले एक नॉन इन्वेसिव सेंसर्स विकसित किए हैं। इस खोज से आने वाले समय में चलने फिरने में असमर्थ लोगों के लिए रोबोटिक लिम्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले पेपर लीक के खिलाफ संसद में सख्त कानून पारित। संसद में पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत अब सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने या नकल करवाने वालों पर भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा का कड़ा प्रावधान किया गया है। वहीं देश की पहली वंदे भारत मालगाड़ी का सफल ट्रायल। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई की रफ्तार बढ़ाने के लिए अपनी पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस ट्रेन ने ट्रायल के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की। वहीं असम और ओडिशा में बाढ़ का अलर्ट। देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। असम के कई जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं ओडिशा में महानदी का जल स्तर बढ़ने से प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं नीट यूजी काउंसलिंग की नई व्यवस्था। मेडिकल दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। इस बार छात्रों की सुविधा के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग का नया सिस्टम लागू किया है। इसी के साथ नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में सामने आया है कि लीक हुए प्रश्न पत्रों के लिए कैलाश और शिवालिक जैसे कोड नामों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं कोलकाता में होगा भारत और ब्राजील का फुटबॉल मैच। जी हां, फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आधिकारिक पुष्टि की है कि भारतीय फुटबॉल टीम और ब्राजील की टीम के बीच एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंडली मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले गाजा में शांति समझौते के लिए नए प्रयास। गाजा में चल रहे तनाव को कम करने के लिए अमेरिका की ओर से 20 पॉइंट शांति और निशस्त्रीकरण योजना पेश की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता की कोशिशें जारी हैं ताकि क्षेत्र में हिंसा रुक सके और नागरिकों को राहत मिल सके। वहीं स्पेन और मोरक्को सीमा पर संकट। स्पेन के सेउटा सीमा पर उस वक्त स्थिति बिगड़ गई जब हजारों लोगों ने एक साथ बॉर्डर पार करने की कोशिश की। मोरक्को सीमा से हुई इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की है। वहीं अमेरिका में नेशनल बल्ड क्राइसिस की घोषणा। जी हां, अमेरिका के अस्पतालों में भीषण गर्मी और इमरजेंसी मामलों के बढ़ने के कारण खून की भारी कमी हो गई है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश में इतिहास का दूसरा नेशनल ब्लड क्राइसिस घोषित किया है। वहीं अमेरिका में वीजा नियम और फीस में बदलाव पर चर्चा। अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा नियमों में बड़े बदलावों को लेकर प्रस्ताव सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार वर्क परमिट के लिए प्रस्तावित नई फीस को लेकर वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों और पेशेवरों में चिंता देखी जा रही है। वहीं AI मॉडल्स की सुरक्षा पर बड़ा खुलासा। साइबर सुरक्षा परीक्षणों के दौरान एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स ने 3 बड़ी कंपनियों के सुरक्षा नेटवर्क को भेद दिया। इस टेस्ट के बाद टेक दुनिया में AI की सुरक्षा और कंट्रोल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। वहीं ब्लैक सी में भारतीय नाविक लापता। जी हां, काला सागर में एक कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमले के बाद एक भारतीय नाविक लापता हो गया है। मर्चेंट नेवी का ये भारतीय जवान हाल ही में अपनी ड्यूटी पर गया था। बचाव दल उनकी तलाश में जुटा हुआ है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 नीरज चोपड़ा जैवलिन फाइनल में। जी हां, ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। जी हां, भारत के वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसी के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी बेचने के फैसला का विरोध। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप के शेयर बाहरी निवेशकों को बेचने की योजना पर विवाद बढ़ गया है। यूरोपीय फुटबॉल संघ यानी कि UEFA और कॉनकाफ यानी कि CONCACAF ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए फीफा के आयोजकों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। वहीं भारतीय मुक्केबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 10 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। वहीं 2027 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के वेन्यू का ऐलान हो गया है। ICC ने 2027 में होने वाले पुरुषों के वनडे वर्ल्ड कप के वेन्यू घोषित कर दिए गए हैं। ये टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका के 8 शहरों, जिम्बाब्वे के 3 शहरों और नाम्बिया की राजधानी विंडहोक में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: रेडियो ब्रिस्बानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व नेंडी संगम कॉलेज फिजी के वाइस प्रिंसिपल और इंडियन सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के प्रधान तथा ब्रिस्बन के संजय सुमेर और अजने सुमेर के पिता तथा चंद्रा सुमेर के पति ब्रिस्बन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर PA हॉस्पिटल ब्रिस्बन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 1 अगस्त सुबह 9:30 से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स एंड क्रेमेटोरियम 329 होलैंड पार्क ब्रिस्बन में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप रजने सुमेर जी को 0411-027-801 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.
3: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
4: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Sir, on stage, 5 minutes.
3: Okay. तुम्हारी मैं जा रहा हूं. लगता रूम में रह गया.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। हाँ तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिसौनी 101 AM ते जी आरजे संदेश शौलक दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असी करनियां ने ढेर सारियां गल्लां। तुसी की करना है, तुसी साडे नाल जुड़ना है तां जुड़ना शुरू कर दो फटाफट दे नाल। रेडियो बिसौनी 101 AM साडा फेसबुक पेज है जी, बिसौनी @bisauni.com साडी ईमेल आई डी है। सारी जिहड़ा भी तुहानू चंगा लगदा है तुसी अपना नाल पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो। फटाफट दे नाल चक लो अपना फोन ते करनिया शुरू करो साडे नाल गल्लां। मैं की कहना है, मैं थोनू गीत सुनाने ने, गल्लां बातां दा सिलसिला जारी रहूगा, पर पहला तुसी आए करो, ए सोहणे जिहे गीत इंजॉय करो। मैं हुणे वापस आउंदी हां।

जी आनू जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होयो। देखो कोर्टरूम ड्रामा एक अजिहा जोनर हैगा है जिस विच दर्शकां नूं अपनी सीट विच बने रखण दी कमाल दी काबिलियत उस दे विच हैगी है। बंद कोर्टरूम विच तिखी बहस, चौंकाउण वाले सबूत, वकीलां दा तिखा रवैया ते इंसाफ दे लई कदे ना खत्म होण वाली लड़ाई स्क्रीन ते ना एक अनोखे रोमांच पैदा करदी है। बॉलीवुड ने ना कई बेहतरीन फिल्मां बनाईयां जो ना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नूं दिखांदियां ने बल्कि समाज दी दा जिहड़ा कौड़ा सच ते सिस्टम दीआं कमियां नूं भी सामने लिआउंदा है। जेकर तुसी सस्पेंस थ्रिलर अते माइंड गेम्स नाल भरियां फिल्मां दे फैन हैगे हो ना तां अज मैं तुहानूं कुछ अजिहीआं बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा बारे दसूंगी जिन्हां नूं तुसी शायद देखिया भी होगा ते जे नहीं देखिया तां उहनां नूं तुसी मिस बिल्कुल भी ना करो। दसदी आं मैं तुहानूं एक एक करके उहनां सब दे बारे विच, पर पहलां सुणो एक गीत।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसोनी 101 एम ते चार चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। देखो जदों जदों कोर्टरूम ड्रामास दी गल आऊगी ना, उस तो अमिताभ बच्चन दी एक फिल्म हैगी है जिहड़ी टॉप ते आऊगी, ते उसका नाम है जी पिंक। जी हाँ, डायरेक्टर अनिरुद्ध राय चौधरी दी पिंक नूं बॉलीवुड दे इतिहास विच महिलावां दे अधिकारां ते सहमति दे मुद्दे ते बनी सब तो जरूरी फिल्मां विचों एक मन्निया जांदा है। अमिताभ बच्चन दी दमदार आवाज अते दीपक सहगल दे रोल विच उन्होंने कोर्ट विच अजिहियां दलीलां दित्तियां जिसने पूरे समाज नूं हिला के रख दिता। कहानी तीन कामकाजी महिलावां दे इर्द-गिर्द घूमदी है जो एक अमीर परिवार के आदमी के खिलाफ सैक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल करदियां ने। जिस तरह नाल कोर्टरूम दे अंदर कुड़ियां दे करैक्टर नूं बदनाम किया जाता है, तो अमिताभ बच्चन का नो मीन्स नो दे नाल जवाब देना डरावना है। काफी ज्यादा वधिया फिल्म है, तुसी जरूर देखियो जे नहीं देखी।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: मुंडा सा।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिसोनी वलसर वाले हम ते चार छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए। अगला नाम जेड़ा आंदा हैगा ओ है जी बहुत ही ज्यादा सोहनी मूवी है ओ ते जदो तुसी उसका एंड देखोगे ना तो तुसी कहोगे हो की गया हैगा तुसी खुद सोची पै जाओगे। ते फिल्म दा नाम है जी सैक्शन 375। अक्षय खन्ना ते रिचा चड्ढा दी फिल्म हैगी है। ते ए फिल्म इस जोनर दी सब तो अंडररेटेड ते दिमाग घुमा देण वालियां फिल्मां विचों इक है। कहानी इंडियन पीनल कोड दे सैक्शन 375 यानी कि रेप दे गिर्द घूमदी है। कोर्ट रूम दे अंदर दो बहुत काबिल वकील एक आरोपी अक्षय खन्ना एक आरोपी का केस लड़ रहा है। अक्षय खन्ना दूसरा पीड़िता का केस लड़ रही है यानी कि रिचा चड्ढा। फिल्म बहुत ध्यान दिखाती है कि किवें कानून और न्याय कदे कदे दो वक् वक् चीजा बना सकते ने। स्क्रीन पे इन्ना टाइट है ना कि दर्शकों नूं अपनी सीट तो ना एक मिनट लई भी हिलण नहीं दिंदा। दर्शकों नूं अखीर मिनट तक पता ही नहीं चलता कि असली गुनहगार कौन है।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होयो। अगली फिल्म हैगी है जी अवार्ड विनिंग फिल्म हैगी है, बहुत ज्यादा शानदार फिल्म हैगी है, जिसनों देख के थोड़िया अखा दे विचों हंजू भी जरूर निकलणगे, क्योंकि वह हैगी इस तरह की फिल्म है। तो फिल्म का नाम है जी जय भीम। बहुत ज्यादा हिट हुई है, बहुत ज्यादा पसंद की गई है, तो कहानी बहुत ज्यादा वधिया हैगी है। साउथ के सुपरस्टार सूर्या की फिल्म है, तमिल फिल्म है जय भीम, जो हिंदी विच भी अवेलेबल हैगी है। एक सच्ची घटना से आधारित है, जो तुहाड़ियां अखां विच हंजू जिवें मैं पहला कहा ना कि लिया के हटूगी। फिल्म विच एक गरीब आदिवासी आदमी ते पुलिस चोरी का झूठा आरोप लगाती है, ते कस्टडी विच उसकी मौत हो जाती है। इस तों बाद वकील चंद्रू यानी कि सूर्या बिना कोई फीस लए हैबियस कॉर्पस पिटीशन के जरिए कोर्ट विच केस लड़ता है। जिस तरह नाल कोर्टरूम दे अंदर पुलिस की क्रूरता ते सरकारी मशीनरी दे झूठ दा पर्दाफाश हुंदा है ना, ओ इस फिल्म नू एक कल्ट सिनेमैटिक विरासत बनाउंदा है। आए,

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी ओन सैनो आने ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। इस बाद जेड़ी फिल्म आंदी है की है वह है जी फर्स्ट वाली चौली LLB, क्योंकि उसके तीन पार्ट आ चुके ने 1, 2, 3। तीनों की कहानी बहुत ज्यादा सोहनी है, पर आप हुण गल करदे हां फर्स्ट वाली दी, जॉली LLB 1 ओजी वाली। जेकर तुहानूं सीरियस सस्पेंस दे विचकार थोड़ा ह्यूमर ते तिखा स्टाइल पसंद है ना, तो अर्शद वारसी ते बोमन ईरानी दी जॉली LLP एक परफेक्ट चॉइस है। दिल्ली दे एक हिट एंड रन केस ते आधारित फिल्म दिखाउंदी है कि किवें अमीर लोग पैसे का इस्तेमाल करके इंसाफ खरीद सकते ने। जद एक छोटा स्ट्रगलिंग वकील जॉली देश के सब तो महंगे वकील तेजपाल राजपाल का सामना करता है, कोर्टरूम का माहौल सच विच बहुत शानदार हों। जज के तौर पर सौरभ शुक्ला की परफॉर्मेंस से उन्होंने रियलिस्टिक डायलॉग फिल्म नूं होर ज्यादा खास पल देंदे ने।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते वाले रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101.1 FM ते जारचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। हुण जदों इन्हीं शानदार फिल्मों की गल हो रही है तो अक्षय कुमार की फिल्म का जिक्र किवें ना होवे, यह तो बनता ही नहीं ना। बनता है जरूर जी, जरूर बनता है, जिक्र होगा, पर जौली LLB 2 या 3 का बिल्कुल भी नहीं। नाम है जी फिल्म का रुस्तम। अक्षय कुमार स्टारिंग रुस्तम ना 1959 दे मशहूर KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य केस तो इंस्पायर्ड है कि है। इस फिल्म विच एक नेवी ऑफिसर अपनी पत्नी दे लवर दा मर्डर कर दिंदा है ते कोर्ट विच अपना केस खुद लड़ता है। केस दी सब तो खास गल जूरी सिस्टम दा इस्तेमाल है। कोर्ट विच चल रही गवाही अते मीडिया दे दबाव विचकार रुस्तम दे केस दा क्लाइमैक्स देखण लायक है, जिस विच उसदा देशभक्ति वाला काट पासा पलट दिंदा है।

देखो बेस्ट कोर्टरूम ड्रामास बारे में तो अंदाजता ए में तो उसे फिल्मा बारे दस्ते है इससे फिल्मा दी गल कीती है कि केड़ियां फिल्मा बेस्ट है गियां ने कोर्टरूम ड्रामास बाकी सीरीज बहुत सारियां है गियां ने हाल फिलहाल दे विच भी बहुत सारे कोर्टरूम ड्रामास रिलीज होए ने जिहड़े बहुत ज्यादा वधिया है गए ने उन्हां बारे भी तुहानू जरूर दसूंगी फिलहाल तुसीं ये दसो कि इन्हां दे विचों तुहानू केड़ी पसंद है क्योंकि ये दी बेस्ट वालियां है गियां ने केड़ी तुसीं देख लिया ते केड़ी तुसीं देखण दी प्लानिंग कर रहे है क्यों जरूर दस्यो ते जुड़दे जरूर रहा करो साडे नाल रेडियो बिरसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जिते बिरसोनी sony.com ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: आएगा।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

तो मित्रों, आज खुशी की बात है कि अगस्त महीना लग चुका है। आज 1 अगस्त 2026 है और आहिस्ते आहिस्ते सर्दी का मौसम जाने लगेगा। 29 दिन और झेलना है इसे। तो सर्वप्रथम चले मौसम की खबर सुनते हैं। आज के मौसम की खबर जो है वो मुझे मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन से प्राप्त हुआ है और आज के खबर के अनुसार साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में ठंड रहेगा। अभी तो भाई 11 डिग्री है यहाँ पर, 8 से लेकर 11, और दिन में कहते हैं कि ज्यादातर धूप निकलेगी ब्रिस्बेन में या हल्की फुहारें यहाँ बरसेंगी। 6:30 बजे सूर्य उदय हुआ है, 5:19 पर सूर्यास्त होगा। हवा का रफ्तार थोड़ा धीमा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और आज ब्रिस्बेन में अधिक से अधिक तापमान रहेगा 21 और कम से कम 12। इप्सविच में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ दिन में 22, रात को 8, 11 हवा का रफ्तार, और गोल्ड कोस्ट में 21 दिन में, रात्रि को 12, हवा का रफ्तार 19। सनशाइन कोस्ट में कहते हैं कि कुछ हल्की बारिश होगी, 19 दिन में, रात्रि को 14, हवा का रफ्तार 23। और वेलिंगटन में ज्यादा धूप निकलेगी 8 दिन में, क्या बात है, बहुत ठंड है, 8 दिन में 3 रात को, हवा का रफ्तार भाई बहुत तेज है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑकलैंड में धूप निकली हुई है, 14 दिन में, रात्रि को 4, हवा का रफ्तार 13, और 7:19 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:30 बजे सूर्यास्त होगा। फिर नेंडी ले चलते हैं, नेंडी लंबा सा सुबह, सभी केंद्रों पर कहते हैं ज्यादातर धूप निकलेगी और 25 रहेगा दिन में नेंडी में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 8, और 6:40 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:55 पर सूर्यास्त होगा। और लंबासा में 27 दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 11, और सुबह में 25 दिन में, रात्रि को 19, हवा का रफ्तार 11। मुंबई में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, और ज्यादातर जिन्हें आज वो नहीं है, यह है अमृतसर का, बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, 31 मैक्सिमम 27 मिनिमम, 13 विंड स्पीड। मुंबई में ज्यादा धूप निकलेगी, 30 रहेगा दिन में, रात्रि को 27, हवा का रफ्तार 31। नई दिल्ली में आकाश पर घटा छाई रहेगी, 33 दिन में, रात्रि को 28, हवा का रफ्तार 18। 6:15 सूर्य उदय होगा और 7:12 पर सूर्यास्त होगा। इसी के साथ ही मित्रों, बतला दें हमारे पास एक शोक सूचना है जिसे 7 के आसपास मैं लेकर आऊंगा, और स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035। तो यह था कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम की खबर। और क्या बात है अमला जी, गुड मॉर्निंग, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हमारे तरफ से, और आपको भी, आपका तो दिन है, मालूम नहीं मौसम कैसा है, लेकिन जैसा भी हो खुशी की बात है आप जाग चुकी हैं, अब बहुत तड़के जागे होंगे, और सबको गुड मॉर्निंग कह रही हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मित्रों क्या बात है, कैसे बीता सप्ताह? सप्ताह आया, सप्ताह चला गया, फिर आ गया, लेकिन हर्ष की बात है, ऊर्जा इस तरह से पैदा हो रहा है ज्यादा कि आज 1 अगस्त लग चुकी है और आहिस्ते आहिस्ते हम एका छुट्टियों के बाद फिर गर्मी महसूस करने लगेंगे। वंडरफुल डे, आज दिन बहुत बढ़िया है, हनुमान जी का दिन है, शनिवार है, प्यारा सा मौसम है, और क्या बोलूं आगे। तो आगे बढ़ते हुए हमेशा की तरह आपका मनोरंजन कराएंगे बहुत प्यारा सा गीत से। और कहते हैं भाई, गीतकार तो बहुत होते हैं जो गीता का निर्माण करते हैं, जावेद अख्तर साहब जो शब्द लिखते हैं ना, दिल को छू लेता है, और कुछ खुद पर गुजरा हुआ ये होते हैं ऐसे अवसर। और संगीत निर्देशन राजेश रोशन जी का है, उदित साहब मुस्काए हुए चेहरे पर जो सुर प्रदान करें आपको, अच्छा लगेगा आपको। तो सुबह का नजारा आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, जब हम सुबह घर छोड़ते हैं और रास्ते में गाड़ी चलाते जाते हैं तो बहुत कुछ हम देखते रहते हैं। कोई इस समय तो सैर बहुत कम कर रहे हैं ब्रिस्बेन में क्योंकि ठंड ज्यादा है, और थोड़ा जब दिन ऊपर जाएगा और सूर्य का किरण हम पर वार करना शुरू करेगी तो आप क्या देखेंगे कि भाई खिड़की खुल रहा, कहीं कहीं कैटन रो हो रहे हैं, और कोई चेहरे पर मुस्कान लेकर रास्ता देख रहे हैं या देख रही है, या कुछ रास्ते में चलते हाथ हिला रहे हैं, कोई टूट करते हैं सिटी का, तो ये सब होता रहता है। और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा ये अवसर है, ऐसा अवसर जो है चला जाता है और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि क्या बात है,
जी हाँ, मुझे रिमाइंड आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ तो भाई 1 जुलाई है, हमारे यहाँ तो 31 है। थैंक यू, मालूम है ये मुझे। एक दिन आप लोग हमसे पीछे हो भाई, हम ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहे हैं। तो चलो घर से निकलकर कुछ दूर चलते, रास्ते में उनका आगे।

जी मित्रों, बिल्कुल सही है। और जब हम बचपना में थे, वो टीनेजर्स थे, नौकरी वगैरह शुरू किए थे, तो ऐसे देखते थे ना कि कोई खूबसूरत लड़की का मकान कहाँ है और उसके खिड़की के हम उसको बस खींचते थे, उसका जो इशारा से जैसे वो क्या करते थे, केटन ड्रॉ कर लेते थे और वहाँ से बस केटन थोड़ा हिलाकर और वहाँ से देखते थे। तो वो दिन आज याद रहे हैं बचपना का, और एक गीत मैं छेड़ा हूँ आपके लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे यार दोस्त जो सुन रहे हैं उनको मालूम होगा कि परमानंद क्या कह रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं मिनी मिनी जी की आवाज़ में, ए आर रहमान जी के संगीत पर। छोटी सी आशा, बहुत खूबसूरत सा गीत है। और जब भी कभी मैं इस गीत को बजाता था रेडियो पर, तो हमारे महान भगवान जी अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें ताज़ा हैं। वो हमेशा कॉल करते थे कि परमानंद जी, थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस।

0: आपको याद आ जाएगा ओ बचपना, क्या क्या हम करते थे उस समय। बहुत कुछ करते थे, नटखटाया बहुत था, और ऐसे खेलते थे पानी में, कहाँ पर पाँव नंगे होते, पाँव जो है गीले हो जाते थे, घर में अंदर घुस कर घुस जाते थे, कारपेट वगैरह उन दिनों तो था नहीं बहुत ज़्यादा, बोलते ना कि बस लिपा होता था आपका घर का अंदर जो फ्लो बोलते हैं, और फिर आहिस्ते आहिस्ते कारपेट वगैरह आ गए। लेकिन उन दिनों ये कोई परेशानी होती नहीं थी, बहुत प्यार से कूद कर, एक अगर कुछ लग भी जाए तमाचा तो जल्दी से साफ भी कर देते थे। क्या बात है, वो पुरानी यादें।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑगस्ट 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: दोस्तों इस समय 8 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। परमानंद का साथ है, संगीत सरगम नामक कार्यक्रम है और आप भी साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और चले आगे बढ़ते हैं, आवारा फिल्म का दबंग 3 का लोकप्रिय गीत जिसे अदा कर रहे हैं सलमान अली साहब और साथ दे रहे हैं मुस्कान जी। बहुत खूबसूरत सा नगमा, खूबसूरत शब्द आपके लिए।

0: मित्रों, ये था फिल्म दबंग 2 का बहुत ही लोकप्रिय गीत जो अभी आप सुन रहे थे। और हम आगे बढ़ेंगे, एक विज्ञापन लेते हैं। अब विज्ञापन के बाद फिर एक और गीत आपको हम सुनाएंगे, फिर चले जाएंगे पुराने गीतों की तरफ। मगर उससे पहले एक शोक सूचना जिसे हम आपके लिए पेश करेंगे।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए चलें। जो अगला गीत है मिसमैच सीजन 3 से और गीत के बोल हैं इश्क है। सुनिए आपके लिए।

0: और मित्रों, ये प्रोग्राम आपके लिए, हम रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान, जिसका प्रसारण हम 1701 AM के माध्यम से कर रहे हैं, वहां से पेश कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। इस समय विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड इट्स 7 AM और मौसम की तरफ एक बार फिर हम चलते हैं। आज के मौसम के खबरों में कहा गया कि साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में ज्यादातर धूप निकलेगी और सनशाइन कोस्ट को छोड़कर सनशाइन कोस्ट में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो अब चलते हैं, एक शोक सूचना है, उसे आपके लिए पेश करते हैं और उसके बाद हम एक दो विज्ञापन लेने के बाद चलेंगे आपको लेकर। कहाँ चलेंगे? पुराने गीतों की दुनिया में। रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व नेंडी संगम कॉलेज फिजी के वाइस प्रिंसिपल और इंडियन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रधान तथा ब्रिस्बेन के संजय सुमेर और रजने सुमेर के पिता तथा चंद्रा सुमेर के पति ब्रिस्बेन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर PA हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 1 अगस्त सुबह 9:30 से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन इन क्रेमेटोरियम 329 होलैंड पार्क ब्रिस्बेन में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप रजने सुमेर जी को 0411-027-801 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ शोक सूचना समाप्त हुआ। तो मित्रों, इस सूचना को मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ क्योंकि आज है वो तारीख और आज ही 9:30 से ये शोक सूचना जो है दोबारा हम कर रहे हैं आपके जानकारी के लिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व नेंडी संगम कॉलेज फिजी के वाइस प्रिंसिपल और इंडियन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के भूतपूर्व प्रधान तथा ब्रिस्बेन के संजय सुमेर और रजने सुमेर जी के पिता तथा चंद्रा सुमेर जी के पति ब्रिस्बेन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर PA हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार आज सुबह 9:30 से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स एंड क्रेमेटोरियम 329 हॉलैंड पार्क ब्रिस्बेन में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप रजने सुमेर जी को 0411-027-801 पर कॉल कर सकते हैं। मैं क्या बोलूं, मास्टर साहब जो थे बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वन ऑफ द फर्स्ट गाइस फिजी के जो हैं, इनको स्कॉलरशिप मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में जाकर इंग्लिश की पढ़ाई करने का, और दिल से बहुत अच्छे थे, बहुत शांत स्वभाव रखते थे, कम बोलते थे, हमेशा बहुत बहुत कम बोलते थे, जब जरूरी पड़ता था तब बोलते थे। ये नहीं कि वो कुछ कमज़ोर व्यक्ति थे एकेडमिकली या समाज के प्रति, लेकिन समाज सेवा में बहुत अपना समय को व्यतीत इन्होंने किया और जब कभी मिलते थे बहुत प्यार से आते थे और रुक जाते थे, रुक कर देखते थे कि जब हम बिजी नहीं होते थे तब वो बात करते थे, और कोई महफिल में भी मिलते थे बहुत प्यार से आकर बाजू में खड़े हो जाते थे। तो ऐसे व्यक्ति का हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके जो ये सफ़र था यहाँ तो पूरा हुआ, आगे मालिक इनका ख्याल रखेगा। तो इन शब्दों के साथ एक बात और बोल दूँ शोक सूचना के विषय में। शोक सूचना जो है हमें लिखित मिलना चाहिए, कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और मुफ्त में इसे हम रेडियो ब्रिजबानी के माध्यम से पेश करते हैं। तो चाहे आप टेक्स्ट मैसेज द्वारा भेज दें, अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं, उसका अनुवाद हम हिंदी में कर लेंगे और हिंदी में बोलेंगे, और फिर ज़्यादातर जब समाचार होता है उस समय बजती है और दिन में भी बजेगा क्योंकि ये रेडियो जो है ना 24 घंटे चलती है। तो ये था शोक सूचना के विषय में जानकारी। तो आगे बढ़ते हुए एक खबर हम ले लेते हैं और खबर के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे पुराने गीतों को लेकर।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
4: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: और मित्रों, रेडियो ब्रिजवानी की घड़ी में 5 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, और अब समय हुआ पुराने गीतों का. पुराने गीतों में आपका मैं परमानंद स्वागत कर रहा हूं. और पहला पुराना गीत जो है उसे हम पेश कर रहे हैं मुकेश जी के खूबसूरत आवाज में. फिल्म का नाम था दुल्हा दुल्हन, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी अपने समय की, और पर्दे पर राज कपूर जी और साधना. तो चलो आगे बढ़ते हुए इस खूबसूरत सा गीत के साथ, कैसे भूल सकते ना ये शब्द कि हमने तुझको प्यार किया है जितना कौन करेगा उतना.

जय मित्रों, क्या बात है। कभी कभी ना लोगों में जो हुनर होती है, जैसे जो लोग गीत वगैरह गाते हैं, उनके अंदर अगर दिल में कोई बात होती है जो कहना चाहते हैं, वैसे तो शायद जुबान ना खुले, हम ना बोल सकें, लेकिन एक बार अगर एक बार मौका मिल जाए स्टेज पे जाकर गीत गाने का, और वहाँ तुम्हारा प्रेमिका या जो भी है या प्रेमी हो, तो वो मौका मिल जाता है, तो लोग वहाँ पर कह देते हैं दिल की बातें गीत में। क्या बात है, मालिक ने क्या दिए हैं हमें वो हुनर कि जहाँ पर हम गीत में गाकर अपना दिल की बात का बयां कर देते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लता जी आ रहे हैं इस बार। और फिर क्या होता ना, अगर वो प्यार अधूरा रह जाता है तो किसी के जाने के बाद फिर लता जी आ जाती हैं, क्या लेकर, ये शब्द रोशनी बहुत आता है, सुनिए।

0: जब तरह रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के समा। और ये फिल्म ममता का गीत था और यादें हैं ना यादें याद आती हैं, तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती कि जान देकर भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है मेरे रब्बा जहाँ से लौट कर कोई वापस नहीं आया। याद याद याद बस याद रह जाती है मित्रों, यही बातें हैं जीवन का, यही है यही है यही रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ।
1: की शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
0: ਜੀ ਹਾਂ,
2: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
0: ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਥਾ ਹਮ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹਮ ਭੇਜੇ ਥੇ ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੈਂ। ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਾਈ ਅਗਲਾ ਫਿਲਮ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। उसी फिल्म से एक बहुत ही लोकप्रिय गीत शंकर जयकिशन जी के संगीत पर और शैलेंद्र जी के लिखे शब्दों पर हम सुनवाने जा रहे हैं। वो गीतों की मलिका लता जी की मधुर आवाज में सुनिएगा।

0: जय मित्रों, अजीब दास्तां है ये, क्या बात है। एक एक बात, एक एक जो अंदर की बातें थी वो सुना दिए कलाकार ने। उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ लोगों को संदेशा मिल चुका होगा कि रिश्ते में ऐसे ही है, अगर थोड़ा सा दरार है तो भाई दूर कीजिए।
1: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery pass वाले shop से ले सकते हैं ना?
3: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour, और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
0: और दोस्तों, 21 मिनट हुए हैं 7 बजकर, परमानंद का साथ है, संगीत सरगम प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और लोकप्रिय गीत के साथ। वैसे तो सभी गाने लोकप्रिय होते हैं, वो गाना आप पर किस प्रकार का असर डालता है तब पता चलेगा। तो चलें तीसरी मंजिल फिल्म में। यहाँ पर RD बर्मन जी ने बहुत खूबसूरती से संगीत से संवारा गीत को, और मजरू सुल्तान जी ने क्या एक एक शब्द को चुनकर लिखा है और फिर सुर दिया है प्रदान करने के लिए रफ़ी साहब को। अब महफिल सजी है, सब कुछ ठीक ठाक है, संदेशा भेजना है।

जय मित्रों, कहते ना कि कोशिश से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ ऐसे अवसर आ जाएं, तो कोशिश से मुख मत न मोड़ना, कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओ जाने वाले बालमुआ, लौट के आ, लौट के आ। 1944 का रतन फिल्म का सुपरहिट ड्यूट।

0: जी मित्रों, कोशिश जारी रहने चाहिए। तो ये था अनदर वन ऑफ दोज गोल्डन सॉन्ग्स। तो चलो अतुल जी का खबर ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: अब मित्रों, इस समय 29 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, जी हाँ, और हम आगे बढ़ते हैं। एक और पुराना गीत है, मैं सोचा आपके लिए बजा दूं, क्योंकि अभी तो छेड़छाड़ हो रहा था, एक दूसरे का मिलना जुलना, बिछड़ना, अब क्या चलते हैं, कुछ तो रंग बदला। अब दूरियां जो थी नज़दीकियां में बदलने लगी हैं। तो पर्दे पर देवानंद साहब हैं वहीदा रहमान जी के साथ, और प्यारा सा गीत है गाइड का, जिसे संगीत निर्देशन SD बर्मन जी ने किया है और शैलेंद्र साहब रचे हैं गीत को।

0: जी मित्रों, प्यारा संगीत के साथ साथ पुराने गीतों का कार्यक्रम आज का जो था यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक और सेगमेंट पुराने गीतों का लेकर आपके सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अब हम याद कर रहे हैं उनको जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है। कल आयुष पूरन जी अपना जन्मदिन मना है, नटखट बालक, छोटा सा, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इनका जन्मदिन था कल। और आजी आजा और डैडी और पूरे परिवार के बाकी सदस्य, दादा वगैरह बहुत धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाए होंगे। और हम रेडियो ब्रिजबानी की तरफ से इनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ही बिकम्स अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वेल एजुकेटेड, और फिर सभी कुछ संभाले। इसके साथ साथ जिनका जन्मदिन आज है उन सबको हम याद करते हुए बहुत सारी बधाइयां भेज रहे हैं। जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें भी हम याद दिला रहे हैं कि भाई जोड़ी सदा सलामत रहना चाहिए, तो प्यार से रहें, एक साथ ही रहें, खुशी खुशी रहें, अपने जीवन को व्यतीत करें, हंसी मजाक करके जो समय ईश्वर ने दिया है चलते रहें वहां तक जहां तक उन्होंने लिखी है। इन शब्दों के साथ बस परमानंद की तरफ से दो आशीर्वाद है आपको, तो चलो आगे बढ़ते हैं इस खबर के साथ।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: मित्रों, इस समय 29 मिनट जीने 29 कहां, बहुत समय करीब आ गया है, लगभग 22 मिनट रह गए हैं, जी हां, 8 बजने में। और अब हम अपना प्रोग्राम का जो है माहौल बदल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। किशोर जी आ रहे हैं, नटखट कलाकार, और एस डी बर्मन जी का एक बार फिर संगीत है, आनंद बख्शी जी गीत को रचे हैं। फिल्म का नाम है जुगनू, तो हेलीकॉप्टर की आवाज आएगी, धर्मेंद्र साहब सवार हैं, दूसरे में है मामालिनी जी।

0: मित्रों, प्यार के इस खेल में आप सुन रहे थे क्या बात है। ऐसे ऐसे होते हैं कभी कभी, गीत भी होते हैं, माहौल भी ऐसा होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं खबर के साथ, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो भी विज्ञापन हम यहाँ से बजा रहे हैं उनका आप समर्थन भी करते होगे, शॉपिंग वगैरह करने के लिए वहां जाते होगे या कॉल वगैरह करते होगे।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: डिजिसेल बेटर टुगेदर। Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
0: और मित्रों, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए चलते हैं हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, वो साथ ही चल। कौन है? किशोरदा लता जी के साथ।

जी लाला, क्या बात है, बोलते गए। और आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सा ये दो गाना है। और भूल जाएंगे हम सारी दुनिया के गम, एक पल तुम मिलो सही तो सनम। बजाते हैं आपके लिए, उम्मीद कर रहा हूँ। कौन गा रहा है शायद पूछना चाहोगे आप। जी हाँ, तो कलाकार जो हैं वो हैं हिमेश रेशमिया जी संगीत से, मगर उदित और श्रेया घोषाल जी सुर प्रदान किए हैं।

0: ये मित्रों, एक पल दो घड़ी तुम मिलो तो सनम सुन रहे थे, और इसी के साथ ही 8 बजने में बहुत कम समय बचा है, तो चलो लोटस का एक विज्ञापन ले लेते हैं, फिर एक और गीत सुनाते हैं आपको।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें। अब मौसम भी आहिस्ते आहिस्ते बदलेगा। अलका जी उदी जी के साथ आ रहे हैं, और मुझसे शादी करोगी का लोकप्रिय गीत, लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के।

0: जय मित्रों, क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत था ये। और थोड़ा सा समय है एक और गीत का, उसे हम बजा देते हैं आपके लिए। लंदन थुमकता, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रेडियो ब्रिजबानी आप सुन रहे हैं, परमानंद के साथ हुए है संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।
1: चली गई, उधर करो, फिर चली गई यार, चली गई, चेक करके नहीं ला तू यार।

0: के मित्रों, हमारे स्टूडियो के घड़ी में ठीक 8 बज गए हैं और अब समय हुआ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया का। तो हम विज्ञापन पहले बजाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्वागत हम कर रहे हैं आपका इस 15 मिनट के रानी क्रिएशंस का स्पॉन्सर्ड साप्ताहिक प्रोग्राम फैशन की दुनिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस 15 मिनट के प्रोग्राम में।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जय मित्रों, रानी क्रिएशन स्वागत कर रहे हैं आपको इस सवा घंटे के प्रोग्राम में। और याद दिला दें कि यहाँ पर हर प्रकार के कपड़े मिलते हैं जो आप विज्ञापन में सुने। बच्चों के कपड़े, मर्दों के कपड़े, औरतों के कपड़े, शादी के कपड़े, पार्टी के कपड़े, और फिर पूजा पाठ कर रहे हैं उसके भी कपड़े। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज हैं जो आपको मिलेंगे रानी क्रिएशन शॉप में, जैसे ज्वेलरी टू मैच व्हाट यू वांट टू वेयर। और फिर शादी वगैरह कर रहे हैं तो स्टॉल, पगड़ी, मेंस वेडिंग शूज, दुल्हन अगर कपड़े खरीद रही तो उनके लिए मैचिंग ज्वेलरी भी हो जाएगा शादी का। तो ये सब उपलब्ध हैं लोकली ब्रिस्बेन में ही रानी क्रिएशन शॉप में। अगर आप विज्ञापन ही सुनकर रुक जाते हैं और कभी दुकान का दौरा नहीं किए हैं तो आज मौसम भी प्यारा है, दिन भी अच्छा है, शनिवार भी है, 1 अगस्त है जी, तो चले आए रानी क्रिएशन शॉप में और यहाँ पर आकर अपने मन पसंद के कपड़ों को खरीदें और पैसा का बचत करें। स्पेशल डिस्काउंट्स विल अप्लाई ऑन योर परचेसेस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार भूल चूक माफ फिल्म का ये गाना।
2: बाबू क्या हुआ?
3: हम रोज 29 की रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है।
2: हाँ? मतलब
3: हमारी 30 नहीं आ रही है तितली।

ये मित्रोच्चर बजारी गीत था, बहुत अच्छा लगा। और आप सुन रहे हैं रानी क्रिस्टन्स का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, जहां पर आपके हर प्रकार के कपड़े मिलेंगे और कपड़ों के साथ साथ आपका पैसा का बचत भी होगा। और यहाँ पूरे परिवार के साथ और घरेलू वातावरण में शॉपिंग करें, पार्किंग का कोई चिंता नहीं। लोग बोलते हैं दूर है, दूर नहीं है जी, चाहे इप्सुच से आप चलें, यहाँ इप्सुच मोटो वे लेकर या सेंटेनरी मोटो से आ जाएं, नज़दीक है और सिटी से सिर्फ 7 मिनट दूर बाय का। और यहाँ पर आपको हर प्रकार के कपड़ों के साथ साथ अगर रुद्राक्ष की माला चाहिए तो अभी मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट पर बिक रहा है, बहुत सारा स्टॉक आया है। और DVDs जो हैं वो आप अगर अपने लाइब्रेरी के लिए रखना चाहते हैं तो ये भी क्लियर हो रहा है रानी क्रिएशन शॉप में। ज्वेलरी, यस, इमिटेशन ज्वेलरी गोइंग फ्रॉम एस लव एस $15 अ सेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगला गीत के साथ। आना कहाँ है 33 बाला क्लब स्ट्रीट उलंगेवा में, सुबह 10 बजे और शाम को 4 बंद होता है। सवरे घर।

जी मित्रों, आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, और आपको याद दिला दें कि यहाँ पर हर प्रकार के कपड़े हैं आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको जानते हो कि कपड़े जब खरीदोगे तो उस पर आपको खास बचत मिलेगा, पैसा बचेगा और देखकर आंख से खरीद सकोगे। रेडीमेड साड़ीज का बहुत बड़ा स्टॉक है, रेडीमेड साड़ीज भी आप ले सकते हैं आकर, और साड़ी के साथ साथ संजे सजाने के लिए ज्वेलरी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के लिए भी कपड़े मिलते हैं, बच्चों के कपड़े, औरतों के कपड़े, साड़ीज, ब्लाउजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, अंडा स्केट्स भी है। और इफ़ यू डोंट नो हाउ टू वेयर साड़ी तो रेडीमेड साड़ी बनाकर, या आप जब रेडीमेड खरीदेंगे तो माना फिटिंग्स आपको हो जाएगा रानी क्रिएशन शॉप में, डिस्काउंट्स विल अप्लाई। तो आइए रानी क्रिएशन शॉप, 33 बालाकलाबा स्ट्रीट, उलंगेबा में, फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से लिया गया ये गाना।

0: जमित रो गीत को अदा कर रहे थे जावेद अली और साहिर अली जी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से आप रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया सुन रहे हैं। अगले शनिवार को एक बार फिर आपके सेवा में उपस्थित होकर मैं परमानंद एक और सेगमेंट लेकर आऊँगा। फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स रिमेम्बर द नेम रानी क्रिएशंस। और यहाँ पर शॉप जो है खुलेगी 10 बजे और शाम को 4 बजे तक खुली रहेगी। हर प्रकार के कपड़ों के साथ साथ और बहुत सारे वस्तुएं हैं और ऑनलाइन ऑर्डर भी आप कर सकते हैं rani-creations.com पर जाकर।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage rani-creations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: और इसी के साथ ही रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आपको भेंट कर रहे हैं रानी क्रिएशंस। Until next week, God bless you. Have a lovely and enjoyable day. Happy shopping at Rani Creations. चलो खबर के साथ आगे बढ़ो।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
2: और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हो।
1: क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: और मित्रों आगे बढ़ते हैं, जबकि घड़ी बतला रही है इस समय की लगभग 17:30 हुए हैं 8:00 और 8:30 से निबिया जी आ जाएंगी 10 को लेकर, तो उनका साथ दीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं धमाल फिल्म, जो नया पिक्चर है उस फिल्म से निकाली गई एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है सारी, जिसके बोल हैं संजू राठौड़ और तनिष्क इसे अदा कर रहे हैं।

या मित्रों, गुलाबी साड़ी, बहुत प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, वो शोक सूचना को एक बार फिर मैं बजा देता हूँ क्योंकि फ्यूनरल आज है। रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व नेंडी संगम कॉलेज फिजी के वाइस प्रिंसिपल और इंडियन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रधान तथा ब्रिस्बेन के संजय सुमेर और अजय सुमेर के पिता तथा चंद्रा सुमेर के पति ब्रिस्बेन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 1 अगस्त सुबह 9:30 से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन एंड क्रेमेटोरियम 329 होलैंड पार्क ब्रिस्बेन में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप रजने सुमेर जी को 0411-027-801 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ शोक सूचना समाप्त हुआ। तो मित्रों, याद दिला दूं कि आज है अंतिम क्रिया 9:30 सुबह से। तो चलो आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का अंतिम गीत बजाने का वक्त आया है। उम्मीद कर रहा हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रदीप भाई, केम छो, राम राम। बहुत अच्छा लगा आपके आवाज़ को सुनकर। और मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी सुन रहे हैं। चलें इस गीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं।

मित्रों, आने लगा है इश्क तुम पे, ऐसे आप सुन रहे थे। और चलते हैं अंतिम, एक गजल है अशकों में जो पाया है। खास तौर से अशोक हरगोविंद जी को ऐसे गीत पसंद हैं। तो चलो अशोक भाई, जय सच्चिदानंद, तलत महमूद जी की आवाज में ये गीत, एंड गॉड ब्लेस एवरीवन, गजल लवर्स, तलत महमूद जी।

अमित्रो, इस गीत को यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बस 8:30 बजने वाले हैं और अगली बार इसे हम पूरी तरह से आपके लिए पेश करेंगे। तो चलो, इसी के साथ ही प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है आज का, और निविया जी आ जाएंगी थोड़ी देर में, सुनिएगा। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

0: जी मित्रों, थोड़ी देर में निबिया जी आ जाएंगी और बी विद हर, गॉड ब्लेस एवरीवन।
1: जल्दी चलो, जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी। सर, ऑन स्टेज 5 मिनट्स। ओके, तुम आ रही हो? मैं जा रहा।
2: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, टॉप 10, हॉट 10, मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। मेरा सवाल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, टॉप 10, हॉट 10 मतलब वीकेंड, और वीकेंड मतलब बधाई हो आप सबको वीकेंड की। जी हाँ, हैप्पी वीकेंड एवरीवन। सो आर यू एंजॉयिंग योर वीकेंड? जी हाँ, मतलब शुरुआत हो गई है वीकेंड की। पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें सजेस्ट करने वाली हूँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कुछ अच्छा खाया, कुछ अच्छी प्लानिंग की, कुछ अच्छे शोज को देख लिया कि हम ये शोज देखने वाले हैं, अच्छी प्लेलिस्ट बना ली। अरे ये नहीं किया आपने, चलिए कोई नहीं, ये सब हम आपके लिए करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। टॉप 10 हॉट 10 शुरू हो गया है, और टॉप 10 हॉट 10 आपके लिए लेकर आता है वो 10 चुनिंदा गाने जो कि ट्रेंडिंग है, हॉट है, हैपनिंग है, और उन्हीं के साथ आपकी आरजे निव्या भी आ गई है। सो ट्रेंडिंग गानों का बवाल, और साथ में हमारा ये कमाल एकदम कर देगा बवाल। आप लोग बोलोगे हैं निव्या शर्मा फिर से नहीं करनी कोशिश? नहीं नहीं नहीं नहीं, पहेलियां और कहावतें तुम्हारे लिए नहीं बनी, जैसे कि गाना गाना तुम्हारे लिए नहीं बना। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो नहीं करते हैं, सीधा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होती है ऑफकोर्स 10 चुनिंदा गानों के साथ, और जो सबसे पहला यानी कि 10वें नंबर का गाना है वो है आंखों से तूने ये क्या कह दिया, बट नॉट द पुराना वाला वर्जन, बट 2.0 वर्जन, मतलब कि नया वाला वर्जन। तो बिना देर किए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की नंबर 1 यानी कि नंबर 10 सॉन्ग के साथ। इस हफ्ते कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है नंबर 10 पे? जैसे मैंने बताया कि आंखों से तूने 2.0 सुनते हैं, स्कोर फिर करते हैं, और बहुत सारी

0: जी दोस्तों, इसी के साथ ये जो गाना आपने सुना है ये लाजवाब तो आपको सुनाई दे रहा है, बट ऑफ कोर्स द ओजी वर्जन इज ओजी वर्जन। ऑल्दो मैं हमेशा कहती हूँ कि गाने जो हैं वो हर मूवी के लिए नए बनने चाहिए, आपको पुराने गानों से क्यों छेड़ाछाड़ी करनी है, मतलब क्यों करना है आपको, है ना। हम हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं, बट कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि ओके ठीक है, जो भी इन्होंने किया है वो इतना बुरा नहीं है, सो एटलीस्ट वो पॉसिबल है। सो आई गेस दैट इज द रीजन हम ये कहेंगे कि ये गाना जो है वो ठीक है, बट ऑफ कोर्स द ओजी वर्जन इज ओजी वर्जन। द ओरिजिनलिटी जो है वो ओरिजिनलिटी होती है, उसको कुछ भी बीट नहीं कर सकता। बट ये गाना है भाई तेरा स्टार है का, और इसमें है राघव जुयाल, और इसमें आपको राघव और निहारिका डांस करते हुए नजर आ जाएंगे। सो इफ यू लाइक सालसा, इफ यू लाइक रेन डांसिंग, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। या मतलब अभी नहीं, ऑफकोर्स आपको वो वाली बारिश की जरूरत पड़ेगी जो कि थोड़े गर्म मौसम की बारिश होती है, मतलब जो समर्स की बारिश होती है। अभी ठंड वाली बारिश में बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना सर्दी लग जाएगी। जी हाँ, लेकिन जब गर्मी वाली बारिश आएगी, बरसात आएगी, तब आप ये ट्राई कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि रेन डांस का मजा ही अलग है, मतलब अगर आपने कभी रेन डांस ट्राई नहीं किया ना तो जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन गलती से भी अगर आपको कोल्ड हो गया तो मुझे मत आके पीटिएगा। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना, यानी कि 9वें नंबर का गाना आप सबके लिए, इश्क कमीना 2.0। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा आज तुम्हारे सारे गाने 2.0 ही है क्या, कुछ ओरिजिनल भी है? बल इसके बाद सब कुछ ओरिजिनल है, आई मीन एक और 2.0 वर्जन है हमारे पास, इसके बाद ही, उसके बाद आई थिंक सब ओरिजिनल है। और ये है इश्क कमीना 2.0 बेबी डू डाई डू। जी हाँ, ये हुमा कुरेशी की मूवी है, उसका गाना है 9वें नंबर का। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बातें।
1: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

जी हाँ दोस्तों, तो ये तो है थ्रिलर, और नॉर्मल थ्रिलर नहीं है, सॉलिड थ्रिलर है। और अगर आप थ्रिलर के फैन हो तो फिर जाइए हुमा कुरैशी को थोड़ा साथ जो है उनको जो है थोड़ा चेयर कीजिए, और उनको चेयर करने के लिए जाइए थिएटर्स में। और सबसे पहले ऑफकोर्स ट्रेलर देखिए, क्योंकि अगर आपको ट्रेलर में मूवी अच्छी लग रही है एंड इफ यू आर इन टू थ्रिलर्स देन गो फॉर इट, क्योंकि अभी भी मूवी थिएटर्स में लगी हुई है और आप जाकर इसे देख सकते हैं। और एक चीज मैं देख पाती हूँ कि एक चीज जो एक जॉनर चलना शुरू होता है ना, सबके सब वही करना शुरू कर देते हैं। सो इफ कॉमेडी इज डूइंग गुड, एवरीवन विल मेक कॉमेडी मूवीज। इफ थ्रिलर्स आर डूइंग गुड, एवरीवन विल मेक थ्रिलर मूवीज। इफ एक्शन इज डूइंग गुड, एवरीवन विल मेक एक्शन मूवीज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और बहुत सारे और लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता है। सो या अगेन मैं यही कहूंगी कि ये मूवी आप देख सकते हैं, मूवी का नाम है बेबी डू डाई डू। जी हाँ, और इसी के साथ अगले गाने की तरफ अब जाने का वक्त हो गया है, और वो भी एक 2.0 वर्जन है। सो I said कि बस यही एक दो वर्जन है, मैंने कहा था फिर तीन वर्जन है हमारे पास, मतलब तीन गाने हैं हमारे पास जो कि पुराने गानों को रिक्रिएट करके बनाए गए हैं, और ये है उच्चा लंबा कद फॉर एवर, वेलकम टू द जंगल मूवी का ये गाना है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निवा के साथ। तो दोस्तों, मजेदार वीकेंड आ गया है और आपको तो पता ही है कि हमेशा वीकेंड की शुरुआत मैं आपको एक ही चीज से करने के लिए बोलती हूँ, जिस चीज की मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी उस चीज के फैन हो ना, तो आप जिंदगी को इंजॉय करना जानते हो। ऑफकोर्स खाने की बात होने वाली है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज की अच्छी शुरुआत, खासकर दिन की अच्छी शुरुआत, अगर आपने अच्छे खाने से कर ली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इतना खा लीजिए कि उसके बाद फिर आपको अपना सोफा नजर आए और फिर आपको अपना नैप नजर आए। मैं इतना कह रही हूँ कि जो भी खाइए, पर यमी और टेस्टी खाइए। मतलब आपको पता है, टेस्टी खाना खाने से ना हमारी रूह खुश हो जाती है। रूह खुश हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी हसीन जगह है, मतलब दुनिया कितनी अच्छी है, ये नेचर कितना खूबसूरत है, लोग भी बेचारे अच्छे हैं, चाहे फिर वो आपको इरिटेट ही क्यों ना करते हो नॉर्मल डेज पे, पर आपको सब कुछ अच्छा लगता है सिर्फ अच्छा खाना खाने से। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने नहीं किया ना, तो खा लीजिए। फिर आपको जो भी चीज पसंद है, मतलब अगर आपको पैनकेक्स पसंद है, पैनकेक्स खाइए। अगर आपको पसंद है लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा खाइए। अगर आपको पसंद है परांठे, गोभी दे या आलू दे, जो भी है वो खाइए। और अगर आपको पसंद है साउथ इंडियन, तो आप वो खाइए। कुछ भी खाइए, पर प्लीज खाइए जरूर। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, तुमको तो फूड डिपार्टमेंट का हेड बना देना चाहिए। वेल, अगर मुझे खाना खाने को मिलेगा यमी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि है जब तलक, और ये है कौन सी मूवी का गाना? वेल ऑफकोर्स ये है कॉकटेल 2 का गाना, और कॉकटेल 2 आपको रेज बेट करती है स्टोरी के मामले में, बट हॉटनेस पूरी है, पूरी की पूरी। जी हाँ, तीनों के तीनों एक्टर्स इतने हॉट हैं और वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर्स भी हैं, बट स्टोरी वाइज आपको ऐसा लगेगा एलो एक ही हो रहा हूं, मतलब ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। जी हाँ, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। तो सुनते हैं इसका गाना, क्योंकि गानों के मामले में ये काफी मजेदार मूवी है, गाने अच्छे हैं। तो जब तलक, जो कि पहला गाना था कॉकटेल 2 का, जो कि ड्रॉप किया गया था मूवी की तरफ से, सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम तो चल रहा है मजेदार और गाने भी चल रहे हैं मजेदार। तो अब खाने की बात हो ही गई थी तो मैंने सोचा कि अपना भी एक किस्सा शेयर कर ही देती हूँ आपके साथ, है ना। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने लगातार 2 दिन मुझे बहुत ही यमी चीज बना के खिलाई। आप लोग बोलोगे आहा निविया, मतलब क्या ही खिलाया होगा, जरा शेयर तो करो भाई। पहले दिन उन्होंने खिलाई हमें तोरी और दूसरे दिन उन्होंने खिलाई हमें लौकी। मतलब लौकी और तोरी दोनों, मतलब एक एक दिन, मतलब गैप नहीं था, कोई गैप नहीं था। अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लौकी और तोरी दे आर वेरी हेल्दी वेजिटेबल्स, बट स्वाद के मामले में वो इतनी खतरनाक है कि मुझे नहीं लगता कि उनको सब्जी की कैटेगरी में रखना चाहिए, खासकर तोरी को। जी हाँ, दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर आप लोगों को भी लौकी तोरी से प्रॉब्लम है तो जरूर हमें ये पिटिशन साइन करने की जरूरत है, और हमें लगता है कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड का ना, उससे इसे हटाने की जरूरत है। हम इसे घास फूस की कैटेगरी में डाल देते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब अगर हम ट्राई करें, देखो जेंजी लोग कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट जेंजी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जेंजी लोगों के पास लेके जाना चाहिए अपना ये टॉपिक, और उनको कहना चाहिए भाई देखो तुम क्या क्या नहीं कर सकते, तुमने एक बड़े वैसे मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, जरा लौकी और तोरी का भी कुछ कर दो तो हम तुमको मान जाएं। जी हाँ, आप मुझे बताइए क्या आप लोग लौकी और तोरी खाना पसंद करते हैं, या आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, या फिर वो भी मेरी तरह नखरीले हैं और वो भी ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं खाना है, हमको तो कुछ और खिलाइए अच्छा सा यमी सा। एंड द फैक्ट दैट कि मम्मी पापा के कैटेगरी में, मतलब मम्मी पापा के लिए ये कैटेगरी इतनी अच्छी है, उनकी कैटेगरी में इसे गलत ही नहीं माना जाता, उन्हें माना उसमें माना जाता है कि कितनी टेस्टी यमी चीज है ये। मतलब आई मीन कैन यू कंपेयर राजमा राइस विद तोरी और लौकी, लाइक कैन यू? आप मुझे बताइए, ठीक है? और कोई मेरे मम्मी पापा को भी समझाइए प्लीज, जाइए यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, और ये है कौन सा, तू ही दिसदा, जो कि है 6वें नंबर का गाना है हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का। और फिर इसके बाद सीधा मैं आपको बताने वाली हूँ ले जाके क्या, वेल ऑफ कोर्स कौन सी मूवीज रिलीज हुई है, क्योंकि रैंट मैंने बहुत ज्यादा कर लिया। पहले ये सुनते हैं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, मैंने खाने के बारे में बात कर ली, खाने के बारे में रेंट भी कर लिया, और अब जरा चलते हैं कि आप इस वीकेंड बाहर घूमी घूमी कैसे जा सकते हैं, और मतलब मूवी कैसे देख सकते हैं। एंड यू नो वी ऑल लव घूमी घूमी, राइट? इट्स अ वर्ड फॉर किड्स जो कि बड़े ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं जब उन्हें बोलते हैं हम कि घूमी घूमी चले, या दैट्स व्हाट दे अंडरस्टैंड। इसी के साथ यहाँ पर अब जैसे कि मैं आपको बताने वाली थी कि क्या आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो बॉलीवुड मूवीज में आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ देखना जाना चाहते हैं कोई मूवी, देन धमाल 4 इज द ऑप्शन फॉर यू। जी हाँ, धमाल इज अ सीरीज जो कि कॉमेडी और एडवेंचर से भरी हुई है हमेशा से। मतलब मुझे आज भी याद है जब मैंने धमाल पहली बार देखी थी, उसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब याद है मुझे, और फोर्थ पार्ट आ गया है विद द ऑफकोर्स ओरिजिनल कास्ट, अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन एंड संजय मिश्रा। यू कैन वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। जी हाँ, इसी के साथ आप एक और मूवी देख सकते हैं, और वो है भाई तेरा स्टार है। जी हाँ, भाई तेरा स्टार है, ये है राघव जुयाल की पिक्चर, और ऑफकोर्स राघव जुयाल जो है वो बहुत ही जबरदस्त डांसर तो है ही, लेकिन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और अब वो एक्टिंग कर रहे हैं। ऑल्दो रिव्यूज के मामले में और क्रिटिकल रिव्यूज के मामले में 4.7 इसे रेटिंग मिली आउट ऑफ 10, बट इट्स अ कॉमेडी थ्रिलर मूवी। इफ यू वांट टू वॉच इट, पहले ट्रेलर देखिएगा और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको जाना है या नहीं। इसके अलावा जो मूवी आप देख सकते हैं वो है अल्फा। जी हाँ, अल्फा आप देख सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स उसे रिलीज हुए कुछ वक्त हो गया। आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की ये मूवी है जो कि रिलीज हो चुकी है, उसे 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं रिलीज को, और वो मूवी जो है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर रही है। पीपल आर लाइकिंग इट, पर सम पीपल आर नॉट लाइकिंग इट दैट मच, सो या दैट कैन ऑल्सो बी अ ऑप्शन। जी हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉलीवुड मूवीज। जी हाँ, हॉलीवुड मूवीज में दो बड़ी मूवीज लगी हैं, और दोनों मूवीज में ही आपको टॉम हॉलैंड मिलने वाले हैं। जी हाँ, हमारे फेवरेट टॉम हॉलैंड। कैसे? वी आर गोना टेल यू अबाउट दैट, लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक और गाना जो कि है अल्फा मूवी का, जो अभी मैंने जिसके बारे में बात की है, उसका गाना है मैसेकर।

जी दोस्तों, तो मास्कर इज नॉट अ गुड वर्ड एक्चुअली, बट यहाँ पर यही तो कहने की कोशिश हो रही है कि ये जो फितूर है मेरा, ये काम खराब कर देगा, मास्कर तक करवा सकता है। सो या आलिया भट्ट और शर्वरी बाघ इसमें यही सब करती हुई नजर आ रही है, और साथ में इसमें बॉबी देओल भी है। आप लोग बोलोगे कि बॉबी देओल ये पूरी फैमिली के पीछे ही लग गए हैं, कपूर फैमिली के। पहले रणबीर कपूर के पीछे लगे हुए थे एनिमल में, अब उनकी वाइफ के पीछे लग गए हैं। वेल, और आपको पता है इट्स अ थ्रिलर, सो यू विल नो कि क्या सिचुएशन है। पहले आपको ऐसा लगेगा कि ओ, आलिया भट्ट और बॉबी देओल तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, मतलब दे आर लाइक फादर डॉटर वाली सिचुएशन। बट फिर आपको पता चलेगा कि बॉबी देओल इज नॉट एग्जैक्टली द यू नो गुड गाय। आई थिंक आई हैव नॉट स्पॉइल्ड इट फॉर यू। जी हाँ, आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू आगे, बट जो भी है आपको खुद देखना पड़ेगा, पहले ट्रेलर देखिए एंड गो फॉर इट। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाली थी और कौन सी मूवीज है जो कि हॉलीवुड में लगी हुई है, और मैंने कहा था कि दो बड़ी मूवीज और दोनों में ही टॉम हॉलैंड है। भाई टॉम हॉलैंड की बात करें तो क्या मजेदार साल चल रहा है। एक है क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी जिसमें वो मजेदार काम कर रहे हैं, और दूसरी तो आपकी उनकी है ही मूवी जो कि है मतलब मार्वल की मूवी, स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे। सो स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे हो चुकी है रिलीज। मैंने पहले ही कहा था कि एकदम एंड मौके पे नहीं मिलने वाली है बीडू, आपको टिकट्स तो पहले ही बुक करवा लीजिएगा। सो या आई होप आपने करवा लिया हो, आप देख सकते हो स्पाइडरमैन जाके, और अगर आप इसका इंतजार कर रहे थे तो जरूर देखिए। लेकिन साथ में द ऑडिसी भी आप देख सकते हैं जो कि क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है, जिसमें मेन यानी सेंट्रल कैरेक्टर जो कि मैट डेमन ने प्ले किया है द ऑडिसियस का, उनके बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं टॉम हॉलैंड, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बाय द वे। सो दोनों ही मूवीज में चल रही है उनकी एकदम जलवाकारी, और हम देख रहे हैं उनको। सो टॉम हॉलैंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। यहां पर इसी के साथ अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, और ये है बंधु 2.0। ओह, मुझे लगा था हमारे पास सिर्फ तीन ही गाने हैं 2.0 वर्जन वाले, टर्न्स आउट हमारे पास चौथा गाना भी है। जी हाँ, और ये है बंधु जो कि कॉकटेल 1 का गाना है, उसका दूसरा वाला वर्जन जो कि कॉकटेल 2 में आया है। इट्स नॉट दैट गुड, बट या इट्स ओके। सो सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, फीफा वर्ल्ड कप तो हो गया, अब उसके बारे में क्या बात करने के लिए रह गई है। वेल, अगले फीफा वर्ल्ड कप में जो कि होने वाला है स्पेन में, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें 64 टीमें यानी कि 64 कंट्रीज यानी कि 64 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जी हाँ, तो सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है कि अगर 64 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी तो इसे फीफा क्यों कहते हो, इसे मेला क्यों नहीं कह देते, इट्स अ फेयर। जी हाँ, इट्स अ सोशल फेयर। जी हाँ, एंड आई वाज लाइक या दैट्स ट्रू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या लगता है आपको, क्या इतनी सारी टीम्स को पार्टिसिपेट करने के लिए मिलना चाहिए? आप लोग बोलोगे कि हाँ, मतलब ठीक है कि मिल सकता है तो ठीक है। कुछ आप लोगों में से ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो डेफिनेटली मेला ही लग रहा है, दिस इज नॉट फीफा वर्ल्ड कप एट ऑल। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, कि फीफा वर्ल्ड कप की खुद की लंका लगी हुई है। मतलब फीफा जो कमेटी है, उन्होंने सोचा था कि हम जो है वो 20% शेयर्स जो है वो बेच देंगे फीफा के और मजेदार तरीके से पैसा कमाएंगे, पर वो पैसा उनको कमाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने तो कह दिया है कि अगर तुमने फीफा को पब्लिक करने की कोशिश की, मतलब तुमने इन्वेस्टर्स लाने की कोशिश की, तो हम तो बायकॉट ही कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारा फीफा वर्ल्ड कप। वेल, मैं तो हमेशा ही कहती हूं कि ये जो फीफा का चेयरपर्सन है ना, ये खतरनाक है, ये ट्रंप का दूर का भाई है। हाँ, मतलब ट्रंप के पास बाल है, उसके पास इतने नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि दोनों भाई नहीं है, क्योंकि ये दोनों लगते हैं भाई, दोनों ही इतने ज्यादा मनी हंग्री है। और 64 टीमें यानी कि 64 टीम्स खेलेंगी फीफा में, उसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना, जो कि तीसरे नंबर का गाना है इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का, गाने का नाम है, चले मैं नहीं बता रही हूँ, आप खुद ही गेस।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ब्रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और दोस्तों भाई, पूरे लिस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, पर ये जिस ऊपर के जो टॉप के दो स्पॉट्स हैं ना, इसमें दो ही गाने बने हुए हैं और यही ट्रेंड कर रहे हैं। बस ये अपनी जो है वो शिफ्ट जो है वो चेंज कर लेते, कभी पहला जो है वो दूसरे पे आ जाता है, दूसरा जो है वो पहले पे आ जाता है, बट ये रहते पहले और दूसरे पर ही हैं। जी मैं बात कर रही हूं मस्कारा की, क्योंकि ये है दूसरे नंबर का गाना और ये है मैं वापस मूवी का गाना। नाउ दिस मूवी इज सो स्वीट, बट ये अब थिएटर से उतर चुकी है, सो आपको इसके OTT रिलीज का इंतजार करना होगा। बट आई एम यू नो गिविंग यू गारंटी कि ये मूवी बहुत ही खास है। वेल ऑफ कोर्स ये बहुत ही प्यारी सी प्रेम कहानी पर बेस्ड है, और दूसरी चीज ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर भी बेस्ड है, और ये है रोमांटिक स्टोरी। जी हाँ, बट ऑफकोर्स बहुत उतार चढ़ाव वाली। सो या ये मूवी अच्छी है, मैं आपको बता दूंगी OTT पे कब रिलीज होगी। इसका ये गाना सुनते हैं और फिर करते हैं और बात।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, और इसका मतलब यही है कि टाटा बाय बाय करने का वक्त हो गया है। पर दैट डजंट मीन कि हम आपको अच्छा सा गाना नहीं सुनाएंगे, बिकल ऑफ कोर्स हम आपको अच्छा सा गाना सुनाएंगे, नंबर वन गाना सुनाएंगे इनफैक्ट, क्योंकि फाइनली हम नंबर वन गाने पर पहुंच गए हैं। एंड इट्स नन अदर देन माशुका, मतलब कॉकटेल 2 जो है वो चली गई है थिएटर्स में, लेकिन माशुका कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपको पता है इस गाने के बारे में क्या कह रही है लड़कियां, इस गाने के बारे में जितनी भी विमेन है ना, वो कह रही है जो इसे पसंद कर रही है कि ये गाना मतलब सेक्सी फील करवाता है, हॉट फील करवाता है, अट्रैक्टिव फील करवाता है, या इसका म्यूजिक, इसके बोल, सब कुछ हमें अच्छा फील करवाते हैं। आई गेस वी नो व्हाई, बिकॉज द सॉन्ग इज रियली रियली गुड और हाइप करता है फेमिनिन ब्यूटी को। जी हाँ, सो या दैट्स अबाउट इट, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे इवनिंग वाइब में मंडे को, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मजेदार चीजें करनी है भाई, गपशप करनी है, कुकिंग करनी है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, सुनना है, सोना है, और गाना भी है यार, जो मतलब बेसिकली जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, और कुछ अच्छा सा बिंज वॉच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो या दैट्स अबाउट इट, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, नंबर वन सॉन्ग माशुका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415 952